0: फिर उम्र साहब बयान देते हैं। अब बीजेपी पे हमने ये सवाल खड़ा किया है तो कहीं ना कहीं कोई सच्चाई तो है। हाँ, अब चोर खुद थोड़ा कहेगा मैं चोरी करता हूँ, तो अब चोर मचाए शोर, बीजेपी का हाल वही है, तो इसलिए अब वो शोर मचा रहे हैं तो मचाने दीजिए। लेकिन इतनी जरूर है कि आज बीजेपी को उमर साहब ने, जम्मू कश्मीर की बीजेपी को उमर साहब ने एक्सपोज कर दिया।
1: आज जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने एक बेहद ही गैर जिम्मेदाराना और निंदनीय बयान दिया है, जब उन्होंने बगैर किसी तथ्य के आधार पर यह अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी के विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही है। भाजपा की जम्मू कश्मीर इकाई ने इस वक्तव्य की तीव्र निंदा करते हुए उनसे सीधे सीधे कहा है कि या तो वो सबूत प्रस्तुत करें अथवा वो माफी मांगे।
2: बहुत ही भ्रमित करने वाला बयान कि उनकी सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और 20 करोड़ 30 करोड़ का इल्ज़ाम जो उन्होंने लगाया है ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, आधारहीन तथ्यहीन है, ये मिसलीडिंग है और बेसलेस एलिगेशन हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो ज़बरदस्त हंगामा उठा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंत्रियों के खिलाफ, शायद उस भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। उमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सत्य से बहुत दूर है, भ्रमित करने वाला है।
3: And there's a rift in Punjab Congress that has intensified after the Channi faction met. Channi faction met the Punjab Congress in charge Bhupesh Baghel, demanding removal of the current Punjab LOP Raja Wari. Channi demonstrated his strength at the meeting. 12 MLAs and 82 former candidates were present. Bhupesh Baghel assured that the message would be conveyed to party high command and also told media that there is no one upset and there is no infighting in Punjab Congress. MP Randhawa said that the party must reverse its decision sometimes and they don't want a compromise leader. Raja Waring told the media that he and Randhawa will sort out their problems very soon.
4: Dekho saryan ne apni gal keh li hai aur us gal de vichon Baghel saab ne saryan di gal sun li hai. Dekho hamesha main vi ik state de vich secretary hega, sanu sare hi kehnde aa, पर असी अप्रोप्रिएट लैवल ते जाके वो कन्वे करते हैं कि आ प्रॉब्लम्स हैगी आ, इहदा सोल्यूशन जिहड़ा आ इदां दा सोल्यूशन हैगा, और मेरा ख्याल है कि वो सारिया चीज़ां जिहड़ियां कन्वे करनगे।
5: हाई कमान का फैसला है, उस पे किसी का एतराज नहीं है, सब हाई कमान के साथ है। कुछ बातें हैं जिसको हमारे साथियों ने रखा और मैंने सभी साथियों से को विश्वास दिलाया कि जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होने के नाते मैं सभी के हितों का ध्यान रखूंगा। कोई व्यक्ति ये ना सोचे कि उनके ऊपर किसी बड़े नेता का गौरव नहीं है, लेकिन यदि वो जीतने के लायक है निश्चित रूप से टिकट मिलेगी, ये मैंने विश्वास दिलाया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, कुछ बातें साथियों ने रखी है, उसको मैं हाईकमान तक पहुंचा दूंगा।
6: ये वो अगर आपको ही बता दिए फिर मीटिंग में क्या बोलेंगे? कोई कोई शर्त नहीं है, नहीं बड़े राजा बड़े प्रेसिडेंट है, उसको आप ही आ जाना चाहिए था। मेरी कोई नाराजगी नहीं है, मैं उसके साथ ही रहा हूँ, तो उसको देखना चाहिए कि किसकी नाराजगी
7: है। नहीं, कौन है कॉम्प्रोमाइज लीडर? उन्होंने नाम लिया?
8: नाम तो नहीं।
7: अगर नाम नहीं लिया तो फिर तुसी ये क्यों कह रहे हो कि कॉम्प्रोमाइज लीडर? तुसी मेरे वाल क्यों इशारा कर रहे हो? दूजी सुखजिंदर सिंह रंधावा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो सुखजिंदर सिंह रंधावा नाल ते जां वो मेरे नाल साढ़े चार साल पौने पांच साल इकट्ठे रहे हैं, और जे कोई साढ़े चो कॉम्प्रोमाइज़ हुंदा तो असी इन्ना चिर इकट्ठे नहीं रह सकते सी, जो उन्होंने बयान दिते। पर उन्हां दी गल बिल्कुल ठीक है कि कोई भी स्लीपर सैल पार्टी दे विच कॉम्प्रोमाइज लीडर नहीं होना चाहिए।
3: The Twisha death investigation has taken a significant turn. A major breakthrough has emerged in Twisha death case, with AIIMS submitting its final 11-page forensic report to CBI. The report is set to strengthen a crucial piece of evidence in the investigation, a gym belt allegedly linked to Twisha's death. Forensic experts have found that the injury pattern on Tushar's neck matches the belt recovered during the investigation. The report also states that skin tissue matching Tushar was detected on the belt, further reinforcing the evidentiary value. While the findings establish a possible link, the AIIMS report does not rule out any foul play at this moment. The exact cause and the circumstance of Tushar's death remain under investigation. The DMK has rejected BCK's push for a joint front with TVK against the BJP. The party has made it clear that there is no proposal to join hands with Vijay's TVK at the national level. DMK said BCK should direct the alliance proposal to Vijay, who has been calling DMK his main political rival. The party also continued its attack on Congress, alleging it was betrayed over political interests. DMK said that the Congress failed to act as a true India bloc partner, further highlighting growing differences within opposition. VCK chief has been battling and talking about the fact that perhaps DMK and TVK alliance on the national front is good for the state of Tamil Nadu.
8: Our leaders, look, this problem is between DMK and Congress. Actually, Congress backstabbed DMK just after the defeat. Just for a couple of ministership in the state politics, in the state government, they failed to view it as a national, what to say, point of view, national politics, as India bloc, because they'll be losing. If DMK is coming out of India bloc, that will cost him 22 MPs out of it. So VCK is trying to patch it up, but our leaders, I don't think they will go along with the VCK's proposal.
9: Right, that may be his view. But where he should say, he is with the TVK in the alliance now. He is a man, is a minister. He should talk to Vijay, not to us, or just express the public. He should talk to Vijay. Why should he talk to us? Vijay says that we are his main enemies. When Vijay's stand is that, how can we both be in the same alliance? So he may wish anything. It is Thirumavaram's view. But how is it possible when Vijay's attack is directly against DMK? What can we do?
3: Let's listen in to what VCK chief told Thirumavaravan has said.
10: TVK enna solraga enga kolgai edirindraanga okay DMK enna solraga ivula naala naanga eduthukkom thodandu eduthukkomraanga India block enna solrudhu avangala eduppadhu dhaan avasiyam illai. அப்போ ஏன் இங்கே ஒரே அணிக்கு வரக்கூடாது? இதுதான் திருமாவளவன் எடுத்துக்கிறேன். என்ன கத்து இருக்குது? கேரளாவில் காங்கிரஸ் இடதுசாரிகளும் பயங்கரமான மோதல். பினராயி விஜயன் ஆர்எஸ்எஸ் காரவனே பேசுறார். ராகுல் காந்தி அங்கே இந்தியா பிளாக்கில் கூட்டணியில் மார்க்சிஸ்டும் உட்கார்ந்து காங்கிரஸும் உட்கார். மேற்கு வங்கத்தில் மம்தா பானர்ஜிக்கும் காங்கிரசுக்கும் சண்டை. ஆனால் இந்தியா பிளாக்ல ரெண்டு பேரும் வந்து ஒன்றா உட்காந்துருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் அப்படி ஒரு அரசு நடக்கக்கூடாதா? இதை திருமாவளவன் சொன்னா உங்களால் அதை புரிந்து கொள்ள முடியாதா?
3: Now talking about what has happened so far as the Bengaluru delivery horror story is concerned. A routine parcel delivery turned into a nightmare for a Bengaluru woman after a delivery agent allegedly flushed his private parts inside her home. A Bengaluru woman has alleged that the delivery agent entered her home without permission, claiming he wanted to use the washroom. She accused that he flushed his private parts before leaving. It's a big NDTV impact. The police have arrested the accused and further investigation is underway. The delivery agent is facing three charges under Bharatiya Nyaya Sahita. These include allegations of sexual harassment, insulting and outraging a woman's modesty, unlawfully entering a residence. And the woman has claimed that despite a repeated request and refusal to allow him to enter the house, he entered her premises. The delivery agent allegedly forced his way inside, and moments later, after coming out, he exposed himself to her.
11: मैं नहीं छोड़ूंगी इसको. मैं पक्का पुलिस स्टेशन जाऊंगी और इसके खिलाफ मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी. और फ्लिपकार्ट मिंत्रा रिक्वेस्ट टाइप के डिलीवरी बॉय आप लोग हायर करते हो क्या? आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं करते हो? पैसे लेके पेमेंट कर रही थी, मेरे को बोलता मैम मेरे को वॉशरूम जाना है। मैं बोली नहीं भैया मैं अलाउड नहीं करूंगी,

0: are the same, but that has not gone down well with the AIAMIM party, and Waris Pathan has strongly objected to it and made a point out there that country runs through constitution. And he also asked the question whether the Prime Minister has declared our country as a Hindu Rashtra, and he also makes a point that, you know, Muslims don't fear anyone and they work and will continue to work under the framework of constitution, and these all things are purposely done to spread hatred. And again, he said that, you know, this will not be tolerated, and country will definitely work on the lines of constitution rather than, you know, projecting it as a Hindu Rashtra or making such comments is strongly objected by the party and his leader, Waris Pathan. Back to you.
1: Abhishek Awasthi there reporting on the matter. Thank you so much for getting us details of what has been said by Waris Pathan after those comments that were made by Yoga Guru Baba Ramdev. So those remarks on the Hindu Rashtra and shared ancestry has got Yoga Guru Baba Ramdev into this huge controversy, saying that while religions may differ, everyone's ancestors are the same. Asserting that there's no need to fear the idea of a Hindu Rashtra or a Hindu nation, he says that Muslims and Christians have nothing to fear in India, urging people to embrace the tradition of their ancestors. We had Congress leader earlier, Salman Khurshid, questioning those remarks of Baba Ramdev, saying that the Yoga Guru should explain the context behind his statements. Khurshid asked that if everyone is considered Sanatani, then why attempts are being made to create divisions, adding that such remarks require a clear explanation.
2: हमारे मजहब अलग हो सकते हैं, लेकिन पूर्वज तो एक ही है. हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है. हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, यह सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था. डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे, अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ. अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता. अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो. तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो.
3: बाबा रामदेव ने सनातन धर्म की बात करते हुए मुसलमानों के ताल्लुक से जो बात कही कि मुसलमान भी सनातनी है, उनके पूर्वज भी सनातनी थे. दरअसल ये बाहर से आए हुए लोग हैं. असल इस मुल्क की असल कौम तो द्राविड़ियन है, और बाबा रामदेव ने जो तंज कहा है मुसलमानों पर कि आप दाढ़ी रखें, मूछे कटाएं, यकीनन हम इस्लाम को फॉलो करते हैं. बाबा रामदेव जैसे मक्कार और नफरती आदमी को हम टोटल रिजेक्ट करते हैं.
4: घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन पूछ तो उनसे लीजिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे ही पूछ लेते, बाबा रामदेव से पूछ लेते कि उन्होंने ये बात कही है ना. मैं कैसे बताऊं कि उनके मन में क्या है और क्या किस बात, किस परिप्रेक्ष्य में वो इस बात को कह रहे हैं. अरे सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? सबको सनातनी मान लो ना, दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है? ये एक सवाल है ना. तो वो पहले वो खुद तय कर लें पहले वो क्या हैं और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें.
1: Let's switch tracks now to Tamil Nadu, as the Chief Minister is set to visit Perambur for his first trip after assuming office, where he will be launching key welfare initiatives and local infrastructure projects as well. The Chief Minister will inaugurate this new MLA office in the area, launching a fresh ration card distribution drive, and also inspect the newly constructed bus depot during his first visit to the constituency after taking charge. As his first visit to his home constituency after becoming the Chief Minister, it strengthens his connect with his core voters, showcasing his hands-on governance style, highlighting a tech-enabled administration and reinforcing the government's strong focus on urban welfare. Now, staying with news from Tamil Nadu, it's a BJP chief K. Annamalai. This is the former BJP chief Annamalai who has signaled his long-term political ambitions, setting his sights on the elections coming up in 2031 in Tamil Nadu. This is his newly launched platform, V.

0: the same regard. The Aam Aadmi Party has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session. Meanwhile, the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Mandir issue ahead of the elections coming up in the state of Uttar Pradesh.
1: राम मंदिर को हम आप उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से भारत का 100 करोड़ सनातनी देखता है, हमारी आस्था का, विराट आस्था का, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज बना, जिस राम मंदिर के लिए 500 बार हमले हुए हम पर, ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देने का काम किया, कितनी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी रही, लगातार वो आहत की जा रही थी, कुचल ली जा रही थी, उनके ऊपर गोलियां चल रही थी, लाठियां चलवाई जा रही थी, उसके बाद भी भारत का सनातनी और राम भक्त इसे माने नहीं। देश का सौभाग्य कि भारत को एक बड़ा नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में मिला।
2: देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उससे देशवासियों का सिर नीचा हुआ है, आस्था के साथ मजाक उड़ाया है आरएसएस के पदाधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में, चूंकि वो ट्रस्ट का गठन हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके उद्घाटन किया था, और जिस तरह से चंदे का पैसा जो लोग आस्था स्वरूप जाके 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाते थे प्रभु राम के चरणों में, उस पैसे के साथ भी इस तरह का धोखाधड़ी होना, इस तरह का ये दिखना कि पैसे चोरी हो गए और किसी पे कार्रवाई अब तक नहीं होना, ये घोर आश्चर्य का विषय है।
0: And stick with news of Uttar Pradesh. Now the state is set to get a major infrastructural boost with the inauguration of the Lucknow-Kanpur Expressway that's going to be taking place today. We have Rajnath Singh and Nitin Gadkari there alongside the Chief Minister, who will be dedicating this new corridor to the public. This is a 63-kilometer stretch, 6-lane expressway that's expected to slash travel time between Lucknow and Kanpur from 2 to 3 hours to under an hour, while improving connectivity to the region's industrial belt and easing congestion on the existing highways. Around 46,000 trees will also be planted along the route, making it a key project aimed at boosting connectivity, logistics and economic growth in the state. My colleague Ranveer gets us the details.
3: Lucknow is UP's capital, while Kanpur is considered as economic capital of Uttar Pradesh. So, the distance between both these cities is around 80 kilometers, and if we talk about the road connectivity, then a national highway is there, but the national highway was very congested because of hundreds and thousands of trucks as well as cars, because Kanpur not only gives thousands of trucks because of many industries, but also the trucks coming from Bundelkhand area also passes through Kanpur, and that's why after completion of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity will be shortened as well as this connectivity will be easier. So obviously, after the inauguration of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity between both the cities will be easier as well as comfortable. कब ये एक्सप्रेसवे शुरू हुआ था और कितने दिन में बनकर कंप्लीट हुआ?
4: ये तो एक्चुअली नवंबर 2023 में हमारा शुरू किया था, एंड ऑलमोस्ट 3 इयर्स में हमला कंप्लीट कर दिया। टोटल 45 किलोमीटर है, ग्रीन एक्सप्रेसवे है। काफ़ी चैलेंज रहा क्योंकि पूरा ग्रीन फील्ड था, एक्सेस ठीक ठाक से नहीं था, पूरा एक्सेस हमको बनाना पड़ा, तो इसलिए।
3: एक्सप्रेसवे की वैसे लंबाई 63 किलोमीटर है, जिसमें 45 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड है और बाकी एलिवेटेड पार्ट है जो लखनऊ की तरफ से आ रहा है।
4: एलिवेटेड पार्ट है वो पैकेज वन है, और ये 45 किलोमीटर जो पैकेज टू है, ये एक्सक्लूसिवली ग्रीन एक्सप्रेस है, वो एलिवेटेड एक्सप्रेस पैकेज वन है, वो 17.5 किलोमीटर है, टोटल 63 किलोमीटर है।
3: अच्छा, अगर सहूलियत के लिहाज से बात करें तो यहाँ पर क्या क्या ऐसी खासियत है जो किसी भी गाड़ी वाले को ज़्यादा अच्छा फील कराएगी?
4: सहूलियत मतलब जो गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा ATMS फैसिलिटी है, कैमरा लगा हुआ है, VMS वगैरह लगा हुआ है, स्पीडोमीटर वगैरह लगा हुआ है, कोई रॉन्ग साइड में पार्किंग कर देगा, रॉन्ग रूट में जाएगा तो उसके लिए हम लोग कैमरा पूरा लगा हुआ है, कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, 24 आवर्स कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, किधर भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह होगा तो विदिन जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम का अंदर जो 10 to 15 मिनट्स उसके अंदर हमारा एम्बुलेंस पहुँच जाएगा, पेट्रोलिंग व्हीकल पहुँच जाएगा, तो ये

0: Baba Ramdev's remarks on Hindu Rashtra and shared ancestry. The yoga guru said that while religions may differ, everyone's ancestors are the same, and asserted that there is no need to fear the idea of a Hindu Rashtra. He also said Muslims and Christians have nothing to fear in India and urged people to embrace the traditions of their ancestors. I beg your pardon. But the Congress has reacted. Salman Khurshid, on behalf of the Congress, questioned Baba Ramdev's remarks, saying the yoga guru should explain the context behind the statements. Mr. Khurshid asked that if everyone is considered Sanatani, then why are attempts being made to create divisions, adding that such remarks require a clear explanation.
1: हमारे मजहब अलग हो सकते लेकिन पूर्वज तो एक ही है. हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है. हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था. डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे? मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ. अरे जो अपने बात करी वो किसी का नहीं हो सकता. अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो. तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो.
2: बाबा रामदेव ने सनातन धर्म की बात करते हुए मुसलमानों के ताल्लुक से जो बात कही कि मुसलमान भी सनातनी है, उनके पूर्वज भी सनातनी थे. दरअसल ये बाहर से आए हुए लोग हैं. असल इस मुल्क की असल कौम तो द्राविड़ियन है, और बाबा रामदेव ने जो तंज कहा है मुसलमानों पर कि आप दाढ़ी रखें, मूछें कटाएं, यकीनन हम इस्लाम को फॉलो करते हैं. बाबा रामदेव जैसे मक्कार और नफरती आदमी को हम टोटल रिजेक्ट करते हैं.
3: घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन पूछ तो उनसे लीजिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं. उनसे ही पूछ लेते, बाबा रामदेव से पूछ लेते कि उन्होंने ये बात कही है ना. मैं कैसे बताऊं कि उनके मन में क्या है और क्या किस बात, किस परिप्रेक्ष्य में वो इस बात को कहें. अरे सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? सबको सनातनी मान लो ना, दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है? ये एक सवाल है ना. तो वो पहले वो खुद तय कर लें पहले वो क्या हैं और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें.
4: मैं पूरी तरीके से उसकी निंदा करता हूँ. पहले बात तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है. भारत सर्वधर्म संभाव एक सेकुलर कंट्री है, और इसमें संविधान ने सबको इस बात की इजाज़त दी है कि अपने धर्म के मुताबिक वो कपड़ा पहने, अपने धर्म के मुताबिक धर्म का पालन करें, रीति रिवाज करें. तो इस प्रकार का बयान जो है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है. ये जो बयान है ये अहमकाना बयान है.
0: ऑलराइट, ऑन दैट नोट लेट्स स्विच ट्रैक्स नाउ. उत्तर प्रदेश's टू बिगेस्ट सिटीज आर सेट टू come barely 40 minutes apart by road. The Lucknow-Kanpur Expressway is set to open to traffic today, and Defence Minister Rajnath Singh, Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari, as well as the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath, they will jointly inaugurate the 63-kilometre stretch. This six-lane expressway is expected to slash travel time between Lucknow and Kanpur from 2 to 3 hours to under 1 hour, while also improving connectivity to the region's industrial belt and easing congestions on existing highways. Around 46,000 trees will also be planted along the route, we're told, making it a key project aimed at boosting connectivity, logistics, as well as economic growth in Uttar Pradesh. My colleague Ranveer has sent us these ground reports. Take a look.
5: Lucknow is UP's capital, while Kanpur is considered as economic capital of Uttar Pradesh. So the distance between both these cities is around 80 kilometers. And if we talk about the road connectivity, then a national highway is there. But the national highway was very congested because of hundreds and thousands of trucks as well as cars, because Kanpur not only gives thousands of trucks because of many industries, but also the trucks coming from Bundelkhand area also passes through Kanpur. And that's why after completion of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity will be shortened, as well as this

0: and urged people to embrace the traditions of their ancestors, Congress leader Salman Khurshid questioned Baba Ramdev's remarks, saying yoga guru should explain the context behind his statements. Khurshid asked, if everyone is considered Sanatani, then why attempts are being made to create divisions, adding that such remarks require a clear explanation.
1: हमारे मजहब अलग हो सकते, लेकिन पूर्वज तो एक ही है। हम गेट पर प्रवेश कर रहे थे तब पूज्य गुरुदेव भगवान ने वहां पर भी लिखा हुआ है, यहां पर भी लिखा हुआ है, हिंदू राष्ट्र के नाम पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू आर्य वैदिक है, ये सामने भी लिखा हुआ है, मार गेट में भी यही लिखा हुआ था। डरते क्यों भाई? कुछ लोग कहते हिंदू राष्ट्र बन जाएंगे तो मुसलमान कहां जाएंगे, मुसलमान कहां जाएंगे? अपने पूर्वजों की परंपरा को अपनाओ। अरे जो अपने बाप का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। अरे तुम अपने जो पूर्व पुरखे हैं, पूर्वज हैं, अपने ऋषि मुनि हैं, उनकी बात को मानो। तुम दाढ़ी रखो, मूछ कटाओ, कैसी भी टोपी ओढ़ो, पगड़ी पहनो, कैसे भी वस्त्र पहनो, चरित्र अपने पूर्वजों जैसा रखो।
2: बाबा रामदेव ने सनातन धर्म की बात करते हुए मुसलमानों के ताल्लुक से जो बात कही कि मुसलमान भी सनातनी है, उनके पूर्वज भी सनातनी थे। दरअसल ये बाहर से आए हुए लोग हैं, असल इस मुल्क की असल कौम तो द्राविड़ियन है। और बाबा रामदेव ने जो तंज कहा है मुसलमानों पर कि आप दाढ़ी रखें, मूछें कटाएं, यकीनन हम इस्लाम को फॉलो करते हैं। बाबा रामदेव जैसे मक्कार और नफरती आदमी को हम टोटल रिजेक्ट करते हैं।
3: घबराने की तो जरूरत ही नहीं है, लेकिन पूछ तो उनसे लीजिए जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनसे ही पूछ लेते, बाबा रामदेव से पूछ लेते कि उन्होंने ये बात कही है ना। मैं कैसे बताऊं कि उनके मन में क्या है और क्या किस बात, किस परिप्रेक्ष्य में वो इस बात को कहें। अरे सब सनातनी थे तो फिर यहाँ पर इतने दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? सबको सनातनी मान लो ना, दरारें क्यों डालने की कोशिश की जाती है? कभी इधर कभी उधर की बात क्यों होती है? ये एक सवाल है ना। तो वो पहले वो खुद तय कर लें पहले वो क्या हैं और वो किस समाज से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर औरों से बात करें।
4: मैं पूरी तरीके से उसकी निंदा करता हूँ। पहले बात तो भारत जो है हिंदू राष्ट्र नहीं है, भारत सर्वधर्म संभाव एक सेकुलर कंट्री है और इसमें संविधान ने सबको इस बात की इजाज़त दी है कि अपने धर्म के मुताबिक वो कपड़ा पहने, अपने धर्म के मुताबिक धर्म का पालन करें, रीति रिवाज करें। तो इस प्रकार का बयान जो है वो देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। ये जो बयान है ये अहमकाना बयान है।
0: Shifting tracks, UP is set to get a major infrastructure boost with the inauguration of Lucknow-Kanpur Expressway today. Union Ministers Rajnath Singh and Nitin Gadkari, along with Chief Minister Yogi Adityanath, will dedicate this new corridor to the public. In fact, this is a 63-kilometer six-lane expressway, which is expected to slash travel time between Lucknow and Kanpur from 2 to 3 hours to under 1 hour, while improving connectivity to the region's industrial belt and easing congestion on existing highways. Around 46,000 trees will also be planted along this route, making it a key project aimed at boosting connectivity, logistics and economic growth in Uttar Pradesh. My colleague Ranveer has more details. Take a look.
5: Lucknow is UP's capital, while Kanpur is considered as economic capital of Uttar Pradesh. So the distance between both these cities is around 80 kilometers, and if we talk about the road connectivity, then a national highway is there, but the national highway was very congested because of hundreds and thousands of trucks as well as cars, because Kanpur not only gives thousands of truck because of many industries, but also the trucks coming from Bundelkhand area also passes through Kanpur, and that's why after completion of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity will be shortened as well as this connectivity will be easier. So obviously after the inauguration of this Lucknow-Kanpur expressway, the connectivity between both the cities will be easier as well as comfortable. Kab ye expressway shuru hua tha aur kitne din mein bankar complete hua?
6: Ye to actually November 2023 mein hamara shuru kiya tha, and almost 3 years mein hamne complete kar diya. Total 45 kilometer hai green ग्रीन

0: एक्सप्रेस वे है, काफ़ी चैलेंज रहा क्योंकि पूरा ग्रीनफील्ड था, एक्सेस ठीक ठाक से नहीं था, पूरा एक्सेस हमको बनाना पड़ा। तो इसलिए
1: एक्सप्रेसवे की वैसे लंबाई 63 किलोमीटर है, जिसमें 45 किलोमीटर का ग्रीन फील्ड है और बाकी एलिवेटेड पार्ट है जो लखनऊ की तरफ से आ रहा है।
0: एलिवेटेड पार्ट है वो पैकेज वन है और ये 45 किलोमीटर जो पैकेज टू है, ये एक्सक्लूसिवली ग्रीन एक्सप्रेस है, वो एलिवेटेड एक्सप्रेस पैकेज वन है, वो 17.5 किलोमीटर है, टोटल 63 किलोमीटर है।
1: अच्छा, अगर सहूलियत के लिहाज से बात करें तो यहाँ पे क्या क्या ऐसी खासियत है जो किसी भी गाड़ी वाले को ज़्यादा अच्छा फील कराएगी?
0: सहूलियत मतलब जो गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा ATMS फैसिलिटी है, कैमरा लगा हुआ है, VMS वगैरह लगा हुआ है, स्पीडोमीटर वगैरह लगा हुआ है, कोई रॉन्ग साइड में पार्किंग कर देगा, रॉन्ग रूट में जाएगा तो उसके लिए हम लोग कैमरा पूरा लगा हुआ है, कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, 24 आवर्स कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, किधर भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह होगा तो विदिन जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम का अंदर जो 10 to 15 मिनट्स उसके अंदर हमारा एम्बुलेंस पहुँच जाएगा, पेट्रोलिंग व्हीकल पहुँच जाएगा, तो ये सब हेल्प हम लोग 24 आवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं।
2: We'll step in a short break. More updates on the other side. Stay tuned.

0: इसका गांव के नाम बाकड़ा विलेज लिखा रहता है। और फिर सीआईएसएफ को बकायदा इसको बस में बिठा के 2.5 किलोमीटर अंदर ले जाना पड़ता है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, फिर वहाँ से वापस आता है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके हर कोई इसी एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है। और
1: नहीं, वो तो बहुत पहले से, मैं जब स्टूडेंट था पेपर में पढ़ता था कि दमदम एयरपोर्ट में एक मॉस्क है जिसके कारण एयरपोर्ट की जो रनवे है उसको बनाया नहीं जा सका, उस समय पढ़ते थे। किसी भी सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण उसमें हाथ नहीं दिया था, तो आज हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास ही नहीं करती। मॉस्क किसी दूसरी जगह पर बनाया जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत बड़ी बात है?
2: मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं इसको खिलाफ हूँ। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी सरकार जो कर रहा है वो जबरदस्ती है।
3: They say that it cannot be replaced in new places. And first is mosque cannot be in place of illegal place. It should be state of the land should be secured as wakaf land and Islamic genuinity should be there. Without that, no mosque can be constructed anywhere in the world. First, so it was done at that time. I had no idea what is the. I think it was some wakaf place. But now the question is renovation and this replacing is no, it is not that it never had done. If an essential service, security service is required, it can be shifted to another places.
4: On that note, we're slipping into short break. Once we return, we talk about the tensions between Iran and the US. No de-escalation in sight. More on that in moments from now.

0: Moving on now, and this time to controversy from the state of West Bengal. Authorities have suspended prayers at a mosque near the Kolkata airport, citing heightened security concerns as the reason. The decision has, of course, sparked a huge political row, with questions being raised over security, access and religious rights. The mosque, located around 165 metres from the runway, has long been identified as a potential concern for airport operations and emergency response. Authorities have stopped issuing entry passes to worshippers, saying unrestricted public access within a high security airport zone is no longer feasible. Supporting the decision, BJP leader and chief minister of the state, Suvendu Adhikari, has said national security and safety of the international airport at Kolkata must take precedence over all other considerations. The opposition in the state has criticized the move. CPM leader Mullah has said places of worship should not be affected, arguing that security concerns must be addressed without restricting religious access, is what he says.
1: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে। এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে। আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না। তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই।
2: তো বহুত পেলে সে মে জব স্টুডেন্ট থা পেপার মে পড়তা থা কে দমদম এয়ারপোর্ট মে এক মস্ক হ্যায় জিসকে কারণ এয়ারপোর্ট কি জো রানওয়ে হ্যায় উসকো বড়ায়া নেই যা সকা। উস সময় পড়তে থে কিসি ভি সরকার নে অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স কে কারণ উসমে হাত নেই দিয়া থা। তো আজ হামারি সরকার বনি হ্যায়, হামারি সরকার অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স কে উপর বিশ্বাসই নেই করতি। মস্ক কিসি দূসরে জায়গা পে বানায়া জায়েগা তো ইসমে ক্যা দিক্কত বড়ি বাত হ্যায়।
3: जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था। घराने के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था, उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि घराने का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले।
4: देखिए मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है, अगर वो मस्जिद नहीं होकर मंदिर भी रहता तो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है। जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय पश्चिम हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ब्रिटिश एयरवेज ने भी ये सवाल उठाया, तो हम लोगों को आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। आज दूसरा सारो राज्य में देखिए कितना एयरपोर्ट है, हम एक ही दमदम लेकर अभी तक पड़ा हुआ है।
5: मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं इसको खिलाफ हूँ। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी सरकार जो कर रहा है वो जबरदस्ती है।
6: They say that it cannot be replaced in new places. And first is mosque cannot be in place of illegal place. It should be state of the land should be secured as wakaf land and Islamic genuinity should be there. Without that, no mosque can be constructed anywhere in the world, first. So it was done at that time. I had no idea what is the, I think it was some wakaf place. But now the question is renovation and this, replacing is no, it is not that it never had done. If an essential service, security service is required, it can be shifted to another places.
0: Breaking news just coming in, a political controversy has erupted over the National Conference's decision to invite Hurriyat leader Mirwais Omar Farooq to a proposed protest in the national capital next week. The Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah has defended the invite, accusing the BJP of creating what he called, quote unquote, a manufactured controversy. Omar said invitations were sent to over 50 people, but the focus was placed solely on Mirwais. He also questioned the BJP's position, arguing that if the centre's claim that separatism has been wiped out in Kashmir is true, then Mirwais cannot be labeled a separatist.
7: हम दिल्ली का प्रोग्राम करते हैं, 50 से ज्यादा लोगों को जो है हम उसमें शामिल होने के लिए चिट्ठी लिखते हैं।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: The politics around YNR has intensified once again. BJP's CR Keswan has launched a sharp attack

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: B-Mark, the mustard specialist since
6: 1933. सरसों से सरसों।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
11: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
12: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
13: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
14: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया। जहां भी अन्याय हो,
13: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
14: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है।
13: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे। क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
14: प्रशिक्षण हम हमारे
13: नहीं मांगेंगे
14: सर।
15: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, co-operator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
16: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
17: The politics around Wayanad has intensified once again. BJP CR Kesavan has launched a sharp attack on Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, accusing her of failing to visit Wayanad following the recent landslide in the district that has claimed lives. Now, CR Kesavan alleges that the Congress leadership has treated Wayanad as a political constituency rather than one requiring sustained engagement. The BJP is now criticizing the Congress, particularly Priyanka Gandhi Vadra, for her absence from Wayanad, where a landslide has left 8 people dead, alleging that they are part-time politicians who have used the constituency for their political survival. Ashwin Nandakumar tracking the latest political allegations coming in. He joins us live with further clarity at the moment. Ashwin, we have a scathing criticism coming in from the BJP. Any immediate reaction from the Congress yet?
18: While we were reporting there, the incident happened on 7th. It is true that Priyanka Gandhi had not been there physically, but when the Chief Minister V.D. Satheesan came and called for a high-level meeting in the collectorate in Wayanad, we could see in the screen Priyanka Gandhi also heading that meeting over an online meeting, which had the presence of all the key stakeholders, including the National Disaster Relief workers, as well as the collector and various administrators, including the contractors and everything. And there was this 45 minutes meeting which was there. I specifically asked the Kalpata MLA T. Siddhika when Priyanka Gandhi would be arriving over there, and he said Priyanka Gandhi has told him to be on the ground 24 hours, and that's likely so. We have seen T. Siddhik on the ground at the landslide site for the next 5 days. But Priyanka Gandhi,
17: CR Kesavan joining us live on the broadcast this morning. Mr. Kesavan, glad to have you back. Thank you for your time. The BJP has repeatedly criticized Rahul Gandhi's engagement with Wayanad in the past. Now criticism coming against Priyanka Gandhi Vadra. Are you raising a legitimate accountability issue, or are you using a tragedy to score political points against the Congress at the moment?
19: Good morning, Parmeshwar ji, and to all the NDT.
6: A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of 2027 assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming the SP won 37 Lok Sabha seats only because of Congress support. Masood alleged that the SP cannot tolerate outspoken Muslim leaders accusing Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning Muslims. The SP has hit back strongly and dismissed Masood's remark as an attempt to grab attention and maintain that the future of Congress-SP alliance will be decided by the high commands of both the parties. We have reactions coming in. Take a look.
9: नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
20: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं. ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें. ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए. इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है.
6: Shifting to news from Kolkata, authorities have suspended prayers at Bakra Mosque near Kolkata Airport, citing heightened security concerns. The decision has sparked a political row, with questions being raised over security access and religious rights. The mosque, located around 165 meters from the runway, has long been identified as a potential concern for airport operations and emergency response. Authorities have stopped issuing entry passes to worshippers, saying unrestricted public access within a high security airport zone is no longer feasible. Supporting the decision, BJP leader and Chief Minister there, Suvendu Adhikari, said national security and the safety of Kolkata International Airport must take precedence over all the other considerations. The opposition has criticized the move. CPIM leader Hanan Mulla said places of worship should not be affected, arguing that security concerns must be addressed without restricting religious access. Take a look at some of the statements and reactions.
21: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে. এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে. চীন, বাংলাদেশ সব কাছে, এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর. এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না. বাকি ঠিক আছে, আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি. ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না. তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা
22: নেই. ও তো বহুত পহলে সে মে জব স্টুডেন্ট থা পেপার মে পড়তা থা কে দমদম এয়ারপোর্ট মে এক মস্ক হ্যায় জিসকে কারণ এয়ারপোর্ট কি জো রানওয়ে হ্যায় উসকো বড়ায়া নেই যা সকা. উস সময় পড়তে থে, কিসি ভি সরকার নে অ্যাপিজমেন্ট পলিটিক্স কে কারণ উসমে হাত নেই দিয়া থা. तो आज हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास ही नहीं करती. मॉस्क किसी दूसरे जगह पे बनाया जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत बड़ी बात है.
23: हाँ, जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था. घराने के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था, उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है. मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि घराने का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले.
24: देखिए, मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है. अगर वो मस्जिद नहीं होकर मंदिर भी रहता तो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है. जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय पश्चिम हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ब्रिटिश एयरवेज ने भी ये सवाल उठाया, तो हम लोगों को आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। आज दूसरा सारा राज्य में देखिए कितना एयरपोर्ट है, हम एक ही दमनम लेकर अभी तक पड़ा हुआ है।
0: तो ये रनवे के बीचों बीच होने के हुए है, इसीलिए हमारे यहाँ खाली दो ही जो है ऑपरेटिंग रनवे है। यह टीयर थ्री में है और यहाँ पे घुसने का क्राइटेरिया केवल एक आधार कार्ड है। जितने बार ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, खाली एक आधार कार्ड दिखाता है, जिस आधार कार्ड में इसका गांव के नाम बाकड़ा विलेज लिखा रहता है, और फिर सीआईएसएफ को बकायदा इसको बस में बिठा के 2.5 किलोमीटर अंदर ले जाना पड़ता है, वहाँ नमाज पढ़ते हैं, फिर वहाँ से वापस आता है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके हर कोई इसी एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है। और
1: मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं इसको खिलाफ हूँ। शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सरकार जो कर रहा है वो जबरदस्ती है।
2: It cannot be replaced in new places. And first is mosque cannot be in place of illegal place. It should be state of the land should be secured as wakaf land and Islamic genuinity should be there. Without that, no mosque can be constructed anywhere in the world. First, so it was done at that time. I had no idea what is the. I think it was some wakaf place. But now the question is renovation and this replacing is no, it is not that it never had done. If an essential service, security service is required, it can be shifted to another places.
6: Supreme Court has issued a notice to Ram Janmabhoomi Tirtha Kshetra Trust in temple donation theft case. Supreme Court has also sought a status report from the SIT constituted by the UP government. Hearing on the matter is now scheduled on July 20th. Meanwhile, sources tell NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accused's confessional statements. Congress has demanded Prime Minister and Home Minister to respond in Parliament. Party has said it will support the opposition if the issue is raised in upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Mandir issue ahead of UP elections. Take a look at the reactions.
3: SIT की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है।
4: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप और डिजिटल हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्टोर भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वॉज द फर्स्ट फेयर। सेकेंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है।

0: इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दे, तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया।
1: निसंदेह पूरे देश में नहीं अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के, पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा होगी। वो सजा
2: राम मंदिर को हम आप उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से भारत का सौ करोड़ सनातनी देखता है, हमारी आस्था का, विराट आस्था का, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आदरणीय मोदी योगी जी के नेतृत्व में आना, जिस राम मंदिर के लिए 500 बार हमले हुए हैं, पर न जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देने का काम किया, कितनी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी रही, लगातार वो आहत की जा रही थी, कुचली जा रही थी, उनके ऊपर गोलियां चल रही थी, लाठियां चलवाई जा रही थी, उसके बाद भी भारत का सनातनी और राम भक्त इसे माने नहीं। देश का सौभाग्य कि भारत को एक बड़ा नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में मिला।
3: देखिए, राम मंदिर ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उससे देशवासियों का सिर नीचा हुआ है, आस्था के साथ मजाक उड़ाया है आरएसएस के पदाधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में, चूंकि वो ट्रस्ट का गठन हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके उद्घाटन किया था, और जिस तरह से चंदे का पैसा जो लोग आस्था स्वरूप जाके 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाते थे प्रभु राम के चरणों में, उस पैसे के साथ भी इस तरह का धोखाधड़ी होना, इस तरह का ये दिखना कि पैसे चोरी हो गए और किसी पे कार्रवाई अब तक नहीं होना, ये घोर आश्चर्य का विषय है।
4: The US-Iran conflict has escalated further after Iran-linked attacks on commercial shipping in the Strait of Hormuz. The US has launched a fresh waves of strikes on Iranian military targets. CENTCOM says it hit air defenses, coastal radar missile and drone sites and attack boats to degrade Iran's ability to threaten shipping and ensure freedom of navigation through the vital waterway. Amid the crisis, an advisor to Mohtaba Khamenei declared the Strait of Hormuz is shut for vessels, calling it more important than atomic bombs, and also promising Iran will defend the strategic passage. President Trump insists that Strait of Hormuz remains open and says Iran has been hit hard, while Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu says Iran's terror axis is being crushed. Here's how Netanyahu and the IRGC have reacted.
5: את ציר הרשע והטרור האיראני שניסה לקדם את התוכנית להשמדת ישראל באמצעות טבעת חנק של טרור שהוא פרס סביבנו. הרחקנו מעלינו סכנה קיומית מיידית, כולל הסכנה המיידית שנשקפה לנו מהחזקת נשק גרעיני בידי איראן.
6: זה כל שמגיע לאוזניכם מאיראן המפוארת. המשולש של קבלני התעשי הסבאית הגנרלים و انا شیحت سوا شلاخم و هنهاگا همه دینیت ها پولیتیکاییم و روشهی همم شالا کلام رک میشتم شیم بخم کم اگن انوشی اسپیرالات هشتیکا شنوتس را هی توت سر شل اولیگارخیا پیننسید یتسران ای نشک کلی تیک شورت و ایتون نایم شه خوت به او به مخ خم کدی لیمنو هم میخم لاسیم لیو لهیت پرارود و لنفیلا شل میشتار حکی بوش هیخان نمیتسایم ها پولیتیکاییم شلاخم انا شی هم امشال، انا شی حد سوا و هگرمیم هم مرکزیم. و موساد و تپیتا خون شلاخم به محل لاخ حیامیم شباهم. اتم تخت اش و کاش لاخم لحف خین بین یوم للیلا.
4: Iran has launched a wave of missile and drone attacks targeting American military assets across several Gulf nations. The strikes have triggered a fresh confrontation over the strategically vital Strait of Hormuz, with Iran claiming closure on a maritime movement, while Washington insists the waterway remains open.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस
6: 1933। सरसों से सरसों,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा,
10: सबका राजा आकर मसाला।
11: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
12: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
13: The politics around Wayanad has intensified once again. BJP CR Kesavan has launched a sharp attack on Congress MP Priyanka Gandhi Vadra, accusing her of failing to visit Wayanad following the recent landslide in the district that has claimed lives. Now, CR Kesavan alleges that the Congress leadership has treated Wayanad as a political constituency rather than one requiring sustained engagement. The BJP is now criticizing the Congress, particularly Priyanka Gandhi Vadra, for her absence from Wayanad, where a landslide has left 8 people dead, alleging that they are part-time politicians who have used the constituency for their political survival. Ashwin Nandakumar tracking the latest political allegations coming in. He joins us live with further clarity at the moment. Ashwin, we have a scathing criticism coming in from the BJP. Any immediate reaction from the Congress yet?
14: Yet, but while we were reporting there, the incident happened on 7th. It was true that Priyanka Gandhi had not been there physically, but when the Chief Minister V.D. Satishan came and called for a high-level meeting in the collectorate in Wayanad, we could see in the screen Priyanka Gandhi also heading that meeting over an online meeting, which had the presence of all the key stakeholders, including the National Disaster Relief workers, as well as the collector and various administrators, including the contractors and everything. And there was this 45 minutes meeting which was there. I specifically asked the Kalpata MLA T. Siddhika when Priyanka Gandhi would be arriving over there, and he said Priyanka Gandhi has told him to be on the ground 24 hours, and that's likely so. We have seen T. Siddhik on the ground at the landslide site for the next 5 days. But
13: Priyanka Gandhi, CR Kesavan joining us live on the broadcast this morning. Mr. Kesavan, glad to have you back. Thank you for your time. The BJP has repeatedly criticized Rahul Gandhi's engagement with Wayanad in the past. Now criticism coming against Priyanka Gandhi Vadra. Are you raising a legitimate accountability issue, or are you using a tragedy to score political points against the Congress at the moment?
15: Good morning, Parmeshwari, and to all the NDTV viewers. Vulture politics is done by the Congress First family and Rahul Gandhi when they go for photo ops. Let us make one thing very clear. Wayanad is nothing but a political pawn for the Congress First family. The current MP from Wayanad is Srimati Priyanka Gandhi Vadra, and she neglects the constituency with a sense of entitlement like an absentee landlord, similar to how Rahul Gandhi had previously exploited Wayanad when he represented the place. Now, it's been 6 days since this devastating landslide has occurred, and till date, about 8 people have lost their lives. So Priyanka Gandhi Vadra has not even bothered to visit the place, meet the families of the victims and console them. What has she done? As an MP, she's done a token tweet like she does for Palestine and Gaza, and she has totally ghosted and deserted the constituency. This is the same pattern the Congress First family followed earlier, Rahul Gandhi, when he was MP. The overwhelming prevailing opinion was he hardly visited the place, and he was not even attentive to the problems there. In fact, people will recall that Rahul Gandhi duped and hoodwinked the voters of Wayanad. After they voted, he filed for nomination and bribery. So, a fact he never discussed previously. So, the same sense of shocking opportunistic.
13: Well,
6: Welcome back, and we have some breaking news coming in for you. This is regarding the Ladki Behan scheme. 92 lakh names have been removed from Ladki Behan scheme. Abid district sees the highest number of removals. Meanwhile, in Mumbai, the names of over 90 lakh women have been removed from the Majhi Ladki Behan Yojana scheme. The government had announced a month ago that approximately 80 lakh names were being removed following the KYC process. According to latest figures, this number has now crossed the 92 lakh mark as well, compared to the initial beneficiary count of 2.4 crore. This represents a reduction of approximately 38%. It has also been reported that this reduction is not solely due to the failure to complete mandatory procedures. The numbers also dropped due to various reasons related to eligibility criteria. I want to go across to Sujata for one. Sujata, 92 lakh names dropped from various women-related beneficiary schemes. Tell us more on that, because what we're looking at right now is a 38% drop.
9: Well, that's right, and so far the numbers of the beneficiaries who have been removed from the list of the Ladki Behan Yojana have now moved up to 92 lakh women, out of which it is being told as per data that 50 to 52 lakh of these women, they failed to complete the eKYC process, for which a total timeline of 8 months was given to these women, and out of which the highest number of women have been removed from the Bid district, which is again a district very crucial and important for the Mahayuti government. Now, we know that out of all of these 2.4 crore beneficiaries that were registered since October 2024, when right before the Vidhan Sabha elections, we know that it was being considered as a masterstroke by the then Chief Minister Eknath Shinde and his government. But right now we know that after all of these beneficiaries that have been removed out, the total percentage comes up to 38%, that almost 38% beneficiaries have been removed from the total sum of 2.8 crore women who were registered themselves for the Ladki Behan Yojana. Now, there are several of these scrutiny processes that were held after which this figure has come out, but simultaneously we see the opposition putting up a scathing attack on the government, saying that this was just a promise that was kept until the elections, and thereafter we see that the government is now incapable of keeping up to their promises because of course the high budget scheme that Ladki Behan is said to be of, and henceforth we know that the government is currently being put under the scanner for this scrutiny that is being done. But authorities say that this is important, as there were several of these women.
6: Right, Sujata, of course, and the government says this is due to the lack of KYC procedures. But what we're witnessing right now is a huge reset when it comes to Maharashtra women benefit schemes in the state. We'll come back to you shortly for more on this, but thanks. Moving on to other stories now. Authorities have now suspended prayers at Bakra Mosque near Kolkata Airport, citing heightened security concerns. The decision has now sparked a political row, with questions being raised over security access and religious rights. The mosque, located around 165 meters from the runway, has long been identified as a potential concern for airport operations and even emergency response there. Officials have now stopped issuing entry passes to worshippers at that particular mosque situated so close to the airport, saying that unrestricted public access within a high security airport zone is no longer feasible. Supporting the decision, BJP leader Subindu Adhikari said that national security and the safety of Kolkata International Airport must take more importance over all other considerations. The opposition has now criticized the move. CPIM leader Hanan Molla said that places of worship should not be affected, arguing that security concerns must be addressed without restricting religious access.
16: জাতীয় সুরক্ষা এবং বিমানবন্দরের নিরাপত্তা আগে দেখতে হবে। এই বিমানবন্দরের লোকেশন খুব গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চীন, বাংলাদেশ সব কাছে। এটা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। এইখানে এইভাবে খুলে রাখা যায় না। বাকি ঠিক আছে। আমরা তো ধর্ম পালনে কাউকে বাধা দিইনি। ওরা তো বলেছিল যে বিজেপি এলে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবে, নামাজ পড়তে পারবে না, তা বকরি ঈদও করেছেন, পশু হত্যা আইন মেনে করেছেন, অসুবিধা নেই।
17: नहीं वो तो बहुत पहले से, मैं जब स्टूडेंट था पेपर में पढ़ता था कि दमदम एयरपोर्ट में एक मॉस्क है जिसके कारण एयरपोर्ट की जो रनवे है उसको बनाया नहीं जा सका, उस समय पढ़ते थे। किसी भी सरकार ने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण उसमें हाथ नहीं दिया था, तो आज हमारी सरकार बनी है, हमारी सरकार अपीजमेंट पॉलिटिक्स के ऊपर विश्वास ही नहीं करती, मॉस्क किसी दूसरी जगह पर बनाया जाएगा, तो इसमें क्या दिक्कत बड़ी बात है।
18: वहाँ जो मस्जिद था वहाँ कोई औचित्य नहीं था, रनवे के अंदर जानबूझकर उसको करने दिया जाता था, उन्होंने नमाज भी बंद कर दिया है। मुझे लगता है कि वो जगह खाली कर देंगे वो लोग कि रनवे का काम एक्सटेंशन हो और सुचारू रूप से चले।
19: देखिए मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है, अगर वो मस्जिद नहीं होकर मंदिर भी रहता तो भी उसको शिफ्ट किया जा सकता है। जब विजिबिलिटी जीरो हो जाता है उस समय पश्चिम हमारा दमदम एयरपोर्ट में फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते, एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम है। ब्रिटिश एयरवेज ने भी ये सवाल उठाया, तो हम लोगों को आधुनिक एयरपोर्ट चाहिए। आज दूसरा सारा राज्य में देखिए कितना एयरपोर्ट है, हम एक ही दमदम लेकर अभी तक पड़ा हुआ है।
18: तो ये रनवे के बीचों बीच होने के हुए है, इसीलिए हमारे यहाँ खाली दो ही जो है ऑपरेटिंग रनवे है। यह टीआर 3 में है और यहाँ पे घुसने का क्राइटेरिया केवल एक आधार कार्ड है। जितने बार ये लोग नमाज पढ़ने जाते हैं खाली एक आधार कार्ड दिखाता है, जिस आधार कार्ड में इसका गांव के नाम बाकड़ा विलेज लिखा रहता है, और फिर सीआईएसएफ को बकायदा इसको बस में बिठा के 2.5 किलोमीटर अंदर ले जाना पड़ता है, वहां नमाज पढ़ते फिर वहां से वापस आता है। ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है, हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके हर कोई इसी एयरपोर्ट से ट्रैवल करता है। और
20: मुसलमान जो वहाँ समाज है उनका सहमत लेके ये मस्जिद के बारे में कुछ करना है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, मैं इसको खिलाफ हूँ। शुभेंदु अधिकारी, बीजेपी सरकार जो कर रहा है वो जबरदस्ती है।
21: It cannot be replaced in new places. And first is mosque cannot be in place of illegal place. It should be state of the land should be secured as wakaf land and Islamic genuinity should be there. Without that no mosque can be constructed anywhere in the world. First. So it was done at that time, I had no idea what is the, I think it was some wakaf place. But now the question is renovation and this replacing is no, it is not that it never done. If an essential service, security service is required, it can be shifted to another places.
6: In other news, Supreme Court has now issued a notice to Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in temple donation theft case. SC has also sought status report from the SIT constituted by the UP government. Hearing on the matter is now scheduled on July 20th. Meanwhile, sources tell NDTV that the investigation has uncovered some key findings. CCTV footage is said to corroborate the accused's confessional statements. Congress has also demanded the Prime Minister and the Home Minister to respond in Parliament regarding all the donation theft in Ram Mandir. AAP has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session. While the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Mandir issue ahead of the UP elections.
22: आईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है।
23: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप और हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वॉज द फर्स्ट फेयर। सेकंड जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें। तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया।
0: निसंदेह पूरे देश में नहीं अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के, पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो SIT बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा होगी। वो सजा
1: राम मंदिर को हम आप उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से भारत का 100 करोड़ सनातनी देखता है, हमारी आस्था का, विराट आस्था का, हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज बना, जिस राम मंदिर के लिए 500 बार हमले हुए हम पर, ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देने का काम किया, कितनी लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी रही, लगातार वो आहत की जा रही थी, कुचल ली जा रही थी, उनके ऊपर गोलियां चल रही थी, लाठियां चलवाई जा रही थी, उसके बाद भी भारत का सनातनी और राम भक्त इसे माने नहीं। देश का सौभाग्य कि भारत को एक बड़ा नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में मिला।
2: ये राम मंदिर ट्रस्ट में जो कुछ हुआ है उससे देशवासियों का सिर नीचा हुआ है, आस्था के साथ मजाक उड़ाया है RSS के पदाधिकारियों और प्रधानमंत्री कार्यालय की देखरेख में, चूंकि वो ट्रस्ट का गठन हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने खुद जाके उद्घाटन किया था, और जिस तरह से चंदे का पैसा जो लोग आस्था स्वरूप जाके 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया चढ़ाते थे प्रभु राम के चरणों में, उस पैसे के साथ भी इस तरह का धोखाधड़ी होना, इस तरह का ये दिखना कि पैसे चोरी हो गए और किसी पे कार्रवाई अब तक नहीं होना, ये घोर आश्चर्य का विषय है।
6: In other news, a viral claim about ethanol blending made by vlogger Saurav Joshi has not just triggered an internet storm, it has also prompted a fact check. Popular YouTuber Saurav Joshi had claimed that his Mercedes SUV's mileage had dropped dramatically because of ethanol.

0: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
3: सरसों
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
6: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो वंदे भारतम.org पर 19 जुलाई तक।

0: of the stories shaping your world. Join me, Gargi Raut, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
4: सरसों से सरसों।
5: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
6: दैट इफ अ बॉय फ्रॉम अहमदाबाद

0: as far as the juvenile is concerned, but also to the parents, a message needs to be sent. You can't give your keys. You can't give this attitude that your children can get away with murder. Once you hand over those keys, this is exactly what you are telling them. Sir, thank you so much. That's all the time that I have at this moment. Thank you for joining me on this. But this is going to be a big campaign. We will keep talking about it. We'll keep a very, very close eye on this story and make sure that, you know, there is some sort of justice, a sense of justice. And some change, not only in the thinking as far as the law is concerned, but also as parents, please, please don't show your affection or your lack of not giving enough time to your children by giving them expensive cars and keys to vehicles. The result could be this. You need to wake up. All right, let's move on to another story. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh even before the elections are announced. We are in the election season, heading towards the election season in UP, and the Congress and the Samajwadi Party, at least their leaders, some of them seem to be at absolute odds with each other. Now, ahead of the 2027 elections, Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on Samajwadi Party, claiming SP won 37 Lok Sabha seats only because of support by the Congress Party, which, remember, was only able to win 6. Masood alleged Samajwadi Party cannot tolerate outspoken Muslim leaders. He accused Akhilesh Yadav of remaining silent on the issues concerning Muslims. The Samajwadi Party also hit back strongly, dismissed Masood's remark as an attempt to grab attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both parties. So is it a disgruntled Masood speaking, or is this some sort of cover firing which is being done, as both these parties would soon be talking about the number of seats in Uttar Pradesh?
1: देखिए, मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं, और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है, और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
2: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं. ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें. ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए. इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है.
0: All right, let me go across at this moment to Mr. Manoranjan Bharti, Managing Editor, to our sister channel, NDTV India. Somebody you all know, Baba, covers politics for a very, very long time, especially his expertise with the Congress Party. So I thought it's better to bring him in. Baba, ye ho kya raha hai? Imran Masood apni jo constituency hai, local rajniti ka badla utar rahe hain? या ये कवर फायरिंग चल रही है, आर्म ट्विस्टिंग की कोशिश चल रही है? कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें आई थी विधानसभा में, 6 सीटें आई लोकसभा में, और इमरान मसूद कह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी है कौन.
3: देखिए, सबसे पहले तो इमरान मसूद का इतिहास आपको समझना पड़ेगा। ये वही इमरान मसूद है जो कि 2022 में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस छोड़ के चले गए थे समाजवादी पार्टी में। उसके बाद समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव के बाद वहाँ उनकी बनी नहीं, वहाँ उनका उसके बाद वो चले गए बहुजन समाज पार्टी में। अब 2024 में कांग्रेस से सांसद बन के आए, तो वो अपनी जो कंस्टिट्यूएंसी है, जो उनका इलाका है, उसके लिए वो उसको

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मांग मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since
6: 1933. सरसों से सरसों।
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
9: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
10: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
11: अरे मेरे राजा।
12: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
13: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
14: Your first move sets the day, and in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
15: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
16: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
14: I decode the global pulse, shaping the market mood.
15: I bring insights that help you make decisions that matter.
16: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
14: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.
17: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
4: माँ भी हमेशा P-Mark मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: P-Mark, the mustard specialist since 1933.
6: सरसों
18: से सरसों। The news,
19: Ayush. Since when do we do scripts? Fair point. Picture this: the biggest stage, floodlights,
18: wow.
19: 4K, the works. Where's the hook? There's going to be celebrities and guaranteed eyeballs. Where's the hook? Think about this. Front page advertisements and hoardings.
18: Bro, where's the hook?
19: Cross-platform, digital first, virality.
18: Without a hook,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुमा केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा अपनी माँ के मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: B-Mark, the mustard specialist since 1933.
4: सरसों
5: से सरसों। We are over, Jimmy.
6: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
11: Good evening and welcome. Thanks very much for tuning in to NDTV. I'm Padmaja Joshi, and as always on the biggest stories of the day, the buck stops here and lots packed into the show today. But the big story, in fact, is coming from Delhi, the national capital, where the breaking news is...

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा पीमाक मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमाक द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
7: देश का टायर जेके टायर।
8: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
9: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.
10: We are over, Jimmy.
11: Hey. लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
12: योर फर्स्ट मूव सेट्स द डे एंड इन मार्केट्स बीइंग अर्ली इज द एज। द एज बिगिंस द नाइट बिफोर।
13: बिफोर इंडिया वेक्स अप द न्यूज रूम इज ऑलरेडी बजिंग बिकॉज़ द मार्केट रिवॉर्ड्स दोज हु आर प्रिपेयर्ड।
14: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
12: I decode the global pulse, shaping the market mood.
13: I bring insights that help you make decisions that matter.
14: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
12: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.

0: और शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: वेयर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर मीट्स द कूल यूआई यूएक्स डिजाइनर मीट्स द गिफ्टेड कंटेंट राइटर टू क्रिएट द बिग ड्रीम द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी सो वेयर आर यू
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी
3: कुछ तो बात है इस दिल में
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933
5: सरसों
6: So

0: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
2: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मास्टर ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
1: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: पीमार्क, द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
3: We are over, Jimmy.
4: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: खास बात।
1: वाओ मामा क्या स्वाद है।
0: अरे मेरी राजा।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों से सरसों।
7: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
8: I am delighted to be a chairman of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of.

0: So I, if he's watching this, I want to say, please have the guts to join and take our questions on what we are asking here on NDTV. This is a story that shocked the entire country in 2022. The murder and butchering of young Shraddha Walkar by her boyfriend Aftab Poonawalla. So if you have the guts, this is NDTV. We will ask you fair questions. You had agreed to be on the show tonight and you have watched what we have said, what we have exposed and revealed about the case and the proceedings, and you have decided not to take our questions. I appeal to you to come forward and take our questions. But joining me tonight are the relatives of Shraddha Walkar. Her aunt, Rajal Nayak, is with me live. Rajat Shukla is a classmate of Shraddha's, who since 2022 has been speaking out in her support in the pursuit of justice. Meghna Pant is an author, columnist and activist. Welcome to all of you. Rajal ji, main aapke paas pehle aaunga. Kya aap ye sab sunkar aapko kya mehsoos hua? Jo Aftab ko jo jail mein baitha hai abhi, court hearings attend nahi karna hai usko, MA sociology ka exam lena hai usko, to court ne ijazat diya hai ki chalo aap skip kar lo, ab baad mein dekhenge hearings. Ab hamare reporter ne thoda investigation jaanch kiya hai aur ab pata chala hai kagaz ko dekh ke ki Aftab ko multiple bar aise ijazat di gayi hai ki aapko hearings ko attend nahi karna hai. Ek dental appointment ke liye hai, ek mental health checkup ke liye hai. Aise bahut sare udharan hai jisme usko nahi attend karna hai. Aapka kya kehna hai is par, Rajal ji?
1: जी, मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर टाइम जो भी एयरिंग आता है उसका कुछ ना कुछ रीजंस होता है, लेकिन उसको रीजंस क्यों देना है मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है. अगर हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिल रहा है, आज 5 साल होने को आए, भाई साहब भी मर गए, ऐसे नहीं है वो इंतज़ार कर कर के उसको उसकी हस्ती भी नहीं मिली, कुछ भी करने को नहीं मिला, आज इंतज़ार कर कर के उन्होंने अलविदा कर दिया. लेकिन कब तक हम लोग को न्याय मिलेगा यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हम लोग को फांसी चाहिए, उसको फांसी ही देना है, तो उसको क्यों आगे पढ़ाई करना है? अगर उसको पढ़ाई करके उसको स्मार्ट बनाना है, वैसे ही उसका दिमाग बहुत स्मार्ट है, जिस तरह उसने श्रद्धा के साथ किया है, आगे वो पढ़ के उसको आप बाइज्जत करोगे, फिर और श्रद्धा बहुत होएंगे, वैसे बहुत चालू है, तो आप ऐसा करना चाहते हो, तो ये बात सब गलत है. मैं तो चाहती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि ऐसा मत करो, एयरिंग ले लो और जो है वो न्याय हम लोग को दो, हमारे बच्ची को न्याय दो, उसको पिताजी के न्याय दो बस.
0: और राजल जी, जब एनडीटीवी ने इस स्टोरी को ब्रेक किया वीकेंड पर, पब्लिक से बहुत गुस्सा आया सोशल मीडिया पर, क्योंकि लोगों का ये इंटरप्रिटेशन है राजल जी कि कोर्ट्स के लिए प्रायोरिटी न्याय नहीं है श्रद्धा के लिए. कोर्ट्स के लिए लगता है कि उनका प्रायोरिटी है आफताब का शेड्यूल देखना, उनका जो कॉलेज डिग्री है उसका शेड्यूल देखना, उनके मेडिकल अपॉइंटमेंट्स वो सब देखना. प्रायोरिटी न्याय नहीं है.
1: क्यों देखना है कॉलेज डिग्री क्यों लेना है? नहीं, हम लोग को न्याय चाहिए ना, हम लोग को न्याय चाहिए. उसका कॉलेज का क्यों देख रहे हैं? कोर्ट उसका क्यों देख रहे हैं? हम लोग ने गुनाह किया है, हम लोग ने गुनाह नहीं किया, उसने गुनाह किया है. तो आप कोर्ट किसका देखना चाहिए? हमारा देखना चाहिए कि उसको देखना चाहिए? गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है, उसको क्यों देख रहे हैं? इतना साल क्यों दिया? अगर ये फास्ट ट्रैक पे है तो फास्ट ट्रैक के हिसाब से अभी तक हम लोग को न्याय मिलना चाहिए था, क्यों नहीं मिला हमको न्याय? मैं ये कहना चाहती हूँ, पब्लिक तो भड़क गया, वैसे भी वो बाहर आएगा ना, वो जिंदा नहीं बचेगा. हम लोग देंगे न्याय, हम लोग काटेंगे उसको. अगर कोर्ट ने नहीं काटा तो हम लोग काटेंगे उसको. फांसी देनी चाहिए और तभी हमारे श्रद्धा को शांति मिलेगी और उसके डैडी को भी. हम सब लोग उसका इंतजार कर रहे इतने साल से, आज हम लोग दिल्ली आते हैं. क्यों आते हैं? हमारे बच्चे के लिए आते हैं. हमारी लॉयर बहुत अच्छी है, वो हम लोग को अपडेट देती है, लेकिन हमारे लॉयर को भी बोला नहीं जाता है, लॉयर को वो लोग वैल्यू नहीं देते. क्यों नहीं देते? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे बच्ची को न्याय चाहिए, उसका देखना है तो वैसा हम लोग को कुछ तो बताओ, क्यों दिया है, उसका रीजन चाहिए हमको बस.
0: क्या आपको लगता है राजल जी, क्या आपको लगता है कि इस केस में
1: जी

0: प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत हैं। मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, आपको क्यों लगता है कि ऐसे हो रहा है? ये प्रायोरिटी आफ्ताब पर क्यों आ गया है, ना कि न्याय पर?
1: मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर से क्या चल रहा है। हम लोग को हमेशा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही दिया जाता है। अंदर क्या चल रहा है हम लोग को कुछ बताते नहीं है, अंदर हम लोग को लेते नहीं है, हम लोग को बताते नहीं है अंदर क्या चल रहा है हम लोग को। यार उसको अभी उसको पढ़ाई के लिए दे रहे, उसको फांसी देनी है तो ये सब करना ज़रूरी नहीं है ना? क्या ज़रूरत क्या है? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है अंदर क्या चल रहा है। हमारी बच्ची को न्याय मिलने वाला है कि नहीं है? इतना उसके लाड़ प्यार क्यों चल रहा है? जो आदमी उसके टुकड़े करता है और उसको तुम लोग संभालते हो, इतने साल से उसको जेल में रखा है, अभी पता नहीं उसको जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती होगी। अभी ऐसे ही लग रहा है, जैसे कोर्ट में आता है हंसते हंसते आता है, हंसते हंसते जाता है, हम लोग ने आंखों से देखा है। वो लगता ही नहीं है उसने कुछ गुनाह किया है। हम लोग ने गुनाह किया है क्योंकि हम लोग दूर से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं हमारे बच्ची के न्याय न्याय मिलने के लिए। हम लोग टेंशन में रहते हैं हमारे बच्ची को न्याय कब मिलेगा। उसको तो आते हैं, वो तो वीआईपी जैसा आता है, वीआईपी जैसे जाता है, उसको खाना पीना मस्त चल रहा है। ये क्या चल रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है।
0: रजत शुक्ला, यू आर अ क्लासमेट एंड अ फ्रेंड ऑफ श्रद्धाज, यू हैव बीन वेटिंग ऑल्सो फॉर 4 years. How angry are you or how shocked are you that Aftab is being given the permission to skip summons, postpone summons, as NDTV has just investigated and found out, for MA sociology exam, dental appointment, mental health checkup, and many other such reasons? The judges seem to be happy to give Aftab permission to skip summons. Rajat, how do you feel about that?
2: Yeah, I feel that the very definition of democracy is being killed by what's happening. It feels that Aftab is a first-class citizen and Shraddha and people around Shraddha are third-class citizens. It truly feels that way.
0: I agree.
2: And my question is straight. I'm going to ask any and everybody responsible in the authority who can do something and everything in this case. The first would be to the judge himself, the one in Saket's court. What is his name? If you may please tell me.
0: H.S. Jaggi. Justice H.S. Jaggi, but don't address the judge directly.
2: So my
0: Your
2: question,
0: emotions
2: my
0: are understood, be, but yeah.
2: If this goes to him, to Mr. Jaggi, the judge, will he, if by any chance, God forbid, I'm sorry, but if the same happens to his daughter, will he behave the same way? And if not, then why is he on this position to do such a partiality with Shraddha? I want this answer from him.
0: This is a very fair question that, is asked. Meghna, I want to bring you in on this. This is, you know, this anger from Shraddha's aunt, one of the only living relatives who is there, and Rajat, one of her only friends who has had the guts to step forward, is completely understandable. They are shocked. They are shocked that a judge would allow this murder accused. I don't need to remind you about the barbarism of the case. Meghna, you were on this channel and you were with me on my shows when we covered this 4 years ago.
3: Yes.
0: They're allowing him to do everything except attending. Meghna, what do you think?
3: I have tears in my eyes right now because Shiv, I'm not understanding. Anger is justified, but there's a sense of hopelessness that I'm feeling as a woman of this country and as a survivor of domestic violence. There are 200 million women in this country, and this is just reported cases. That's more than the population of Australia. You can order biryani, banyan and bengan in 15 minutes in this country, but getting justice 15 years also not enough. Why? What is going on? Would the judiciary be the same if 90% of perpetrators were women? I mean, what is going on? This system is designed not to protect the women of this

0: court documents, proceedings, etc., to show that a single witness has been cross-examined over 8 separate hearings over several weeks at the request of the defense, because they want to cross-reference, they want to check information. And there is one hearing every few weeks. So 8 separate hearings, you can imagine how long it actually takes. It is no surprise to me that this case is nowhere near being over. Rajal Nayak ji, agar meri baat aa rahi hai, meri awaaz aa rahi hai aapko, mera sawaal ye hai ki कौन लड़ेगा अब श्रद्धा के लिए? आप हैं जो जो दिल्ली आते हैं इस हियरिंग्स अटेंड करने के लिए, और कौन है अब? आपके भाई साहब गुजर गए हैं पिछले साल, कौन रह गया अभी जो श्रद्धा का युद्ध लड़ेगा? कौन कौन है ये?
1: हम लोग ही लड़ेंगे। उनका बेटा है श्री वाल्कर, वो भी है, जैसे जेम्स गोंसाल्विस उनके दोस्त है। हम तीनों हमेशा दिल्ली आते थे उनके साथ। अभी भाई साहब तो नहीं है, लेकिन भाई साहब जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे पे आई है, और बेटा अभी छोटा है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो ले रहा है, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि भाई साहब खुद नहीं चाहते थे श्री को इन्वॉल्व करने के लिए। तभी हम लोग, मैं और जेम्स गोंसाल्विस, हम दोनों ज़्यादा उनके साथ रहते थे और केसेस हैंडल करते थे उनके साथ। और जैसे कि हमारी लॉयर सीमा कुशवा, उनके साथ हमारी बातचीत तो होती है, तो वो हमें अपडेट देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि हमको पता ही नहीं चला। हम लोग सोच रहे थे कि 19 को निकलेंगे बॉम्बे से और 20 का एयरिंग करेंगे, भी वापस आएंगे। उसके बाद सडनली हम लोग को ऐसे न्यूज़ आता है कि एयरिंग कैसे ये हो गई है, तो यही समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है, अंदर का पॉलिटिक्स है कि उसको कोई बख्श दे रहा है, कि उसका समाज उनको दे रहा है। अगर हर लड़की, आजकल लड़की सेफ नहीं है, सबको पता है, तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा कायदा निकालना चाहिए कि लड़की को तुरंत कोई भी अच्छा सा न्याय मिलना चाहिए। बस हो गया, अभी श्रद्धा को न्याय चाहिए। जिस तरह लड़की को अभी काफ़ी केसेस महाराष्ट्र में तो बहुत अभी हो रहे हैं, इसका रेप हो गया, उसका रेप हो गया, तो हम लोग क्यों नहीं उनको सजा देते? हमारा गवर्नमेंट क्यों उनको इतना ये कर रहा है, इतना लाड़ प्यार क्यों कर रहे हैं? बाकी के देश में देखो कितने अच्छे अच्छे कायदे कड़क निकले हैं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप एक्शन लोगे, उसी टाइम एक्शन लोगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे, एटलीस्ट 3 साल के बच्चे के साथ रेप होता है, तो आप सोचो क्या चल रही है।
0: नहीं राजल जी, मैं आपको वादा दे सकता हूँ कि एनडीटीवी का इस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का असर होगा, आप देखेंगे, क्योंकि सिस्टम पूरा हिल गया होगा। अभी जो लाइव जो आपकी आवाज़ जा रही है नेशनल टेलीविजन पर, सब लोग सुन रहे हैं, कोर्ट्स भी सुन रहे हैं, पुलिस भी सुन रहे हैं, तिहाड़ जेल भी सुन रहे हैं। मेघना, दिस इज सच अ ट्रेजिक स्टोरी, लुक एट वॉट राजल जी सेज, यू नो, श्रद्धाज फादर इज नो मोर, डाइड फाइटिंग दिस केस,
1: ब्रदर इज जस्ट। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके वजह से मेरा आवाज दुनिया में पहुंच रही है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपके वजह से, अगर पूरी मीडिया के वजह से, अगर मेरी बच्ची को, हमारे बच्ची को न्याय मिल रहा है, तो अभी दे दो, बस हो गया। अभी 5 साल बहुत हो गए, जिस दिन फांसी मिलेगी ना, उस दिन मेरे भाई को और श्रद्धा को शांति मिलेगी। उसको छोड़ो मत, क्यों लाड़ प्यार कर रहे, वही समझ में रहे, उसको पढ़ाई देने की क्या इतना ज़रूरत क्या है, मुझे वो उसका ही जवाब नहीं मिल रहा है। अभी मैं दिल्ली आऊँगी, मैं गवर्नमेंट को भी पूछूँगी, अपने सरकार को पूछूँगी, मैं यहाँ पे सीएम को भी जाके मिलने वाली हूँ, हमारे देवेंद्र फडणवीस सर को भी जाके मिलने वाली हूँ कि ये क्या चल रहा है। आपने हमें कमिटमेंट किया था, हम लोग फास्ट ट्रैक पर जाएंगे, उसको फांसी की शिक्षा देने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे। हमारे यहाँ पे मैंने अमदर मैडम से भी बात की, वहाँ उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस किया कि हम लोग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाके मिलेंगे, तो मैं जल्द से जल्द मिलके हमारी बच्ची के लिए न्याय मांगूंगी।
0: क्योंकि क्योंकि हमारे मन में भी है कि
1: प्यार जो चल रहा है ना,
0: का मतलब क्या है? अगर एक केस 4 साल के ऊपर भी चल सकता है,
1: मतलब क्या है?
0: तो मतलब ही क्या है? मेघना, माय क्वेश्चन टू यू, जस्ट लुक एट दिस फैमिली, जस्ट लुक एट दिस फैमिली मेघना, you know, the Shraddha's father died fighting, obviously broken hearted, her little brother has just turned 18, they don't want to involve him, his entire life is going to be defined by the fight for justice.
2: It's, you know, Shiv, if this was just an isolated case, perhaps we could dismiss it. But there's such a disturbing pattern in our justice system where all the time this, you know, what ma'am is saying, the extraordinary compassion that's shown to men who are convicted of these heinous crimes, while the survivors and their families are spending years, livelihoods, lives are being lost, waiting for justice. Look at the Nirbhaya case. Justice came after 8 years and the juvenile is out there roaming about, by the way, in the streets of Mumbai.
0: Yep.
2: Bilkis Banu case, remission they were out on. In the Hathras case, in Ram Rahim Singh's case, out on parole, which we just discussed. What is the message that the judiciary is sending to women? I'm not understanding that, you know, we are not asking for some special treatment. We are asking for basic justice. And
0: absolutely,
2: this is much bigger than Aftab Poonawala. Tomorrow, there'll be another Shraddha. There's going to be another family that's waiting outside the courtrooms, another survivor wondering whether the system is going to protect her. Forget when. Is this system even going to protect her? What message are you sending? People are
0: absolutely
2: watching. There is huge, huge outrage that is building up now against the legal system, and something has got to give. We need justice fast and quick.
0: Absolutely. I'm going to thank all of you for the moment. This is only part one of our investigation. I promise you, I will be continuing to put NDTV's rigorous spotlight. Nobody would have even known about this leniency to Aftab had it not been for the NDTV news break on Saturday. And I'm glad we sent out our reporter to do even more. Thank you to all of you for being with me on this story. But just as an ender on this segment, let me just show you some more gems of judiciary. Just look at the things that the judiciary has done in the recent past. Multiple parole for murder, rape convict Gurmeet Ram Rahim of the Dera Sacha Sauda. Anticipatory bail for IAS fraud Pooja Khedkar, who, by the way, has not spent even one day in jail for what she is accused of doing. Bail for murder accused actor Darshan. Slow proceedings against the cash at home justice Yashwant Verma, who was allowed to quit and leave the judiciary with dignity. Instant bail for Lamborghini brat Shivam Mishra. Bail for Pune posh minor's parents. Remember that? It happened just a few weeks ago. Bail for rape accused Kuldeep Sengar. Bail for hit and run killers of Sarthak Mattu. Delayed arrests in the Twisha suicide case. Grabbing breasts, not attempt to rape, says the Allahabad High Court last year. I can spend all night here giving you examples of these terrible, terrible gems of judiciary that have resulted in India's faith in the judiciary coming to an all-time low. We will keep a track of that story. Now it's time for some breaking news. Okay, President Donald Trump's big statement on the ongoing US-Iran war. He has just put out a comment saying the Hormuz Strait is open and will remain open with or without Iran. We are reinstating the Iranian blockade. So named because it is only stopping Iran's ships or customers from entering or leaving. All other countries will have fair and open use of the strait. The USA will be from this point forward known as the guardian of the Hormuz Strait. But as such, and as a matter of fairness, will be reimbursed at the rate of 20% on all cargo ships. So Vishnu Shom is live with me. Vishnu, what are you making of this somewhat grandiose statement that reflects what Trump has been saying over the last few weeks, saying that he controls Hormuz, he's going to levy a fee, you know, getting ships across as well. Doesn't augur well as far as the ceasefire is concerned.
3: Well, what does this say about the open movement of ships across international passages, international waterways? Remember, Iran started this. They started saying that there needs to be a toll tax. Then there was talk about something between Iran and Oman collectively. Now America has jumped in and said that if you want to apply your ships and you want to be protected, then you need to pay us 20% of the value of shipment. This comes at a time when the fighting seems to have resumed properly between Iran and the United States. The United States, for the first time, has been using maritime drones to target, you know, what's left of the Iranian Navy. Iran has got their own drones. In all of this, the bottom line is how many ships are going to be going up and down the Strait of Hormuz? Are we back to square one?
0: Interesting. We'll have to see where this actually leads. But I'm having a sense of deja vu as far as Trump and the Strait of Hormuz is concerned. Vishnu, thank you very much for that. A six-year-old girl, a busy public road, a moving car, and in the passenger seat, not a panicked parent trying to stop the little girl who is driving the car, but a Telangana police sub-inspector calmly supervising the whole thing. You don't believe me? Just look at these pictures. This is real. This is not AI. These pictures are shocking, and it is no surprise that it has gone so wildly

0: स्कूल
1: कहाँ
0: चलता,
1: गया
0: सब
1: एग्जाम्पल
0: बाहर
1: इसका
0: है।
1: इसका?
0: प्लस सर इसके पहले तो एक मैंने पहले एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वीडियो वायरल हुआ था, जिन्होंने जिसमें इन्होंने बढ़िया माला वगैरह पहन के, नोटों की माला पहन करके पार्टियां मनाए थे, मुंबई से आया मेरा दोस्त, इस तरह ये लोग इस तरह का कृत्य कर रहे हैं इस जगह पे। मतलब इनको ये नहीं लगता कि दो बच्चों की जान गई है, दो बच्चे के मतलब पेरेंट्स लोग सब मतलब पीड़ित होंगे, किसी की तकलीफ बढ़ेगी, और ये लोगों ने उस वीडियो को सोशल मीडिया में डाल करके मतलब हम लोग को फिर से पीड़ा बढ़ाई है, जो अभी 2 साल गुजरे थे किसी तरह से, किस तरह से हम लोग काट रहे हैं हम जानते हैं, उसको फिर से इन्होंने जगा दिया, उस चीज को पीड़ा को हमें फिर बढ़ा दिया है। सुनने में आया था यही आपके जो एडवोकेट साहब जी हैं, हीरे जी हैं, उन्होंने पिटीशन दायर की है पुणे कोर्ट में इनकी जमानत याचिका खारिज करने के लिए, मतलब जो जमानत मिली है सुप्रीम कोर्ट में
1: जी
0: कुछ गाइडलाइन के तहत मिली है शर्तों के अनुसार, तो उसको खारिज करने के लिए पिटीशन फाइल की गई है। हम तो चाहेंगे इनको तुरंत अंदर किया जाना चाहिए, क्योंकि इनमें डर, इन्हीं को देख के, यही सब चीजों को देख करके बाकी सबों को डर नहीं है, किसी कोई डर नहीं है सर कि कानून पालिका किसी तरह से कुछ वो कर सकती है, किसी तरह से कुछ हो रहे, कोई नहीं कर पा रहा, किसी को 1% भी डर नहीं है, कानून का खौफ नहीं है, जानते हैं कि मारो सब कुछ करो, और जमानत तो ऐसी रखी हुई है।
1: आई एम
0: आई
1: गोइंग टू
0: मीन
1: एंड दिस show here because I'm out of time. But the reason I wanted to put the spotlight once again because एक नहीं दो नहीं तीन ऐसे केसेस एक दिन में सामने आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आज मेरे शो पर आई विल गिव अटेंशन टू दिस इशू वंस अगेन बिकॉज पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस, पीपल हु हैव ट्रैक्ड दीज स्टोरीज, इट इज एन अनएंडिंग जर्नी फॉर अस एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स द सेम But it has to reach somewhere. That's what we believe in very strongly here on NDTV. Constructive conversations to help the people achieve justice. And that's what we will continue doing it. Whether it is for Siddharth, whether it is for Anish, whether it is for all the people, including the little child who lost their life in Chhattisgarh today because a 17-year-old thug was driving an SUV. I promise we will keep that fight.
0: सर इसमें एक चीज कहना चाहूंगा मैं,
1: जी जी जी
0: अरुण जी, ये कहना चाहूंगा कि इस तरह केसों में सबसे पहले कार्रवाई, गिरफ्तारी अगर बाद में करें, सबसे पहले जैसे आजकल चल रहा बुलडोजर कार्रवाई, इनके पेरेंट्स की तरफ बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाए एक दिन में, तो इनको समझ में आए, तो थोड़ा डर लगे कि हाँ कुछ कार्रवाई हो रही है, इनकी अंदर करते हैं दूसरे दिन जमात लेके बाहर हो जाते हैं, बुलडोजर कार्रवाई जैसे देखने में आ रहा है कि कोर्ट का ऑर्डर हो चाहे, दूसरे दिन बुलडोजर चला देते हैं,
1: सर
0: यही चीज होना चाहिए। जैसे विशाल अग्रवाल का इनकी तरफ बुलडोजर, सब जगह जो ये कार्रवाई जो होनी चाहिए, तो ये
2: नेक्स्ट टाइम
0: होनी चाहिए।
1: Yes,
2: Shiv,
1: yes, Dr. Bedi, very
2: Shiv,
1: good.
2: next time you take up this subject, please look at the act, the, what action has happened concerning the families
1: I will
2: and
1: do
2: the
1: that.
2: School. Let's do a little survey on that.
1: I will do that. I've given you only two examples. I will find more. I take your point. We will extend this conversation because I guarantee you, 1 week from now, there will be even more cases of minors having driven cars. Hopefully, nobody will be killed in those incidents. Thank you very much, Dr. Bedi, Om Prakash Ji and Shilpa, for being with me here tonight on India Matters. It's a wrap here on the show. If you have been, thanks so much for watching. As always, we take up the big stories that matter to you and matter to India. Left, right and center with Vishnu's Court.

0: वहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुँह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि एमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4-4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट होने लग गई। पंखा हमने सारे पंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट करते करते सुबह 6-6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, तो नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टर की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराए का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये?
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जांचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जांचें कराई। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में, 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पर रही।
2: किडनी का
3: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी है सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
4: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
5: ले गया जज बैठे, मैं भर्ती करा दी, जद के बच्चे तो होना लो जज में ठीक, रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी रहे और पैसे नहीं हो, और पैसे नहीं हो जद बाबू ही हो, जद मैं सब खुश हुआ है, बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने जद में क्यों खाई हो, कह भाई कहाँ अपने शिक्षा डोड़ी के मन सर्दी लागे, ले रही हूँ 2-3 घंटा बाद।
2: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली थी?
5: हाँ बच्चे मिली, माओ मिली कि पापा ने बोलो, जब मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये ख़त्म होने वाली है, जब मैं क्यों एकदम रिया खाई हो।
6: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं, क्या अभी 26 दिन हो गए।
7: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर।

0: ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
1: अच्छा।
0: यूरिन नहीं आ रहा था।
1: अच्छा।
0: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गए, पीलिया वगैरह सब कुछ हुआ, किडनी लीवर पे असर। ये तो कोई जा पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी नहीं आई होगी इससे?
2: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, आईवी फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये आईवी फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने आईवी फ्लूड काम लिया था। बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
3: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismita Skin for NDTV.
4: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
5: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who've lost their lives.
6: Their constituency is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem, they go and stand by the people. And then whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
4: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit to Europe. While the party has issued no official statement on this leave, sources have said that he is scheduled to attend the Chhatro Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon session approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
7: Rahul Baba kahan hai? Dhoondiye. Dhoondiye zara kahan hai? Pata nahi kahan hai? Wo bhi tour kar rahe hain. यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी।
8: BJP has also today raised a big question: where is Rahul Gandhi? Where is he holidaying? And there are the
9: Rahul Gandhi, the Prime Minister of India, has he gone on government expense? Has he gone on government expense? What is this obsession with Rahul Gandhi? when the Prime Minister goes abroad as Prime Minister on the expense of the country, of the taxpayer, he comes back empty-handed. Shouldn't that be the question? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
8: So the leader of oppositions, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
9: Well, when obviously people know where he is, he's gone on a break and he's back.
1: राहुल गांधी लापता है. पिछले 20 दिनों से राहुल गांधी विदेश में मजे से छुट्टियां मना रहे हैं. अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज राहुल गांधी वापस आने वाले हैं, पर देश की जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहाँ, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया, क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती. आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं.
4: While the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 Assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the SP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
10: Okay, Mira. नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
1: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं. ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें. ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है.
4: All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
11: आईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में. तो अगली डेट मंडे को दी गई है. तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है. हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑर्डर हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वॉज द फर्स्ट फेयर। सेकेंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें भरोसा है इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दे। तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया।
1: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के। पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा होगी, वो सजा।
4: And with that, it's time for us to slip into a short break. Don't go anywhere. After the break, we get to the international headlines.

0: उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुँह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि एमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट होने लग गई। पंखा पंखा पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, कि नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टर की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने घर बैठा हूँ, मकान किराएगा मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था?
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जाँचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर अंत तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जाँचें कराई। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ही बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पे रही
2: किडनी का।
3: हाँ हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी है, सबकी सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
4: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते, तो डिहाइड्रेशन

0: की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
1: लेर गया जज बैठे, मैं भर्ती करा दी, जद के बच्चों तो होना लो जज में को ठीक, रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी अर्पेश नहीं हो जद बाबू यो, जद मैं सब खुश हुआ है। बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने, जद मैं क्यों खाई हो कह भाई कहाँ अपने शिक्षा डोड़ी के मन सर्दी लागे, डिलीवरी हूँ 2-3 घंटा बाद।
2: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली थी?
1: हाँ, बच्चे मिली, माओ मिली के पापा ने बोलो, जब मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये खत्म होने वाली है, जब मैं क्यों एकदम रिया खाई हो।
3: आते हैं तो खुशी के लिए, लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं। क्या अभी 26 दिन हो गया,
4: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
5: अच्छा,
4: यूरिन नहीं आ रहा था।
5: अच्छा,
4: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गया, पीलिया वगैरह कुछ सब कुछ हुआ है, किडनी लिवर पे असर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी कोई आई होगी जिससे हो रहा है।
6: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, आईवी फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये आईवी फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने आईवी फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
7: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismita Askin for NDTV.
8: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
9: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who lost their lives.
10: Their constituency, it is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem, they go and stand by the people. And whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
8: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit to the Europe. While the party has issued no official statement on this leave, sources have said that he is scheduled to attend the Chhatro Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon set.

0: approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
1: Rahul Baba kahan hai, dhoondiye zara kahan hai, pata nahi kahan hai, woh bhi tour kar rahe hain. Yeh Pradhanmantri ji bhi tour mein gaye, Rahul Gandhi ji bhi tour mein gaye, Pradhanmantri ji desh ko jita ke aaye. और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी.
2: BJP has also today raised a big question. Where is Rahul Gandhi? Where is he holidaying? And there are the...
3: Is Rahul Gandhi the Prime Minister of India? Has he gone on government expense? Has he gone on government expense? What is this obsession with Rahul Gandhi? When the Prime Minister goes abroad as Prime Minister on the expense of the country, of the taxpayer, he comes back empty-handed. Shouldn't that be the question? Why is he going distributing melodies in across the world? And making a fool of himself, I'm sorry.
2: So the leader of opposition, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
3: Well, when obviously people know where he is, he's gone on a break and he's back.
4: Rahul Gandhi lapata hai. Pichle 20 dinon se Rahul Gandhi videsh mein maze se chuttiyan mana rahe hain. Ab Congress party keh rahi hai ki aaj Rahul Gandhi wapas aane wale hain. Par desh ki janta ye puchna chahti hai ki pichle itne dinon mein Rahul Gandhi the kahan? Kisse mile? किसने राहुल गांधी को फंड किया? क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती? आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं.
0: While the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 Assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the SP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
5: Okay, Mira. नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
6: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं. ये हमेशा आते हैं, सोचते इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें. ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है.
0: A All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust.

0: Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
1: एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है।
2: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं। कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप और डीजर्ज हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डस्ट भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वाज द फर्स्ट फेयर। सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दे, तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया।
3: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के। पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, निसंदेह उसको सजा होगी, वो सजा।
0: And with that, it's time for us to slip into a short break. Don't go anywhere. After the break, we get you the international headlines.

0: वी आर ओवर जिमी।
1: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे, गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
2: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट।
3: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
4: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
5: I think it's also important that how they are reshaping the industries.

0: मैं यही कहना चाहती हूँ, हमारे बच्चे को न्याय चाहिए, उसका देखना है तो वैसा हम लोग को कुछ तो बताओ क्यों दिया है, उसका रीजन चाहिए हमको बस।
1: क्या आपको लगता है राजल जी, क्या आपको लगता है कि इस केस में
0: जी
1: प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत हैं? मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूँ, आपको क्यों लगता है कि ऐसे हो रहा है? ये प्रायोरिटी आफ्ताब पर क्यों आ गया है ना कि न्याय पर?
0: मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर से क्या चल रहा है। हम लोग को हमेशा तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ही दिए जाते हैं, अंदर क्या चल रहा है हम लोग को कुछ बताते नहीं है, अंदर हम लोग को लेते नहीं है, हम लोग को बताते नहीं है अंदर क्या चल रहा है हम लोग को। यार उसको अभी उसको पढ़ाई के लिए दे रहे हैं, उसको फांसी देनी है तो ये सब करना ज़रूरी नहीं है ना, क्या ज़रूरत क्या है? मुझे वही समझ में नहीं आ रहा है अंदर क्या चल रहा है, हमारे बच्चे को न्याय मिलने वाला है कि नहीं है, इतना उसके लाड़ प्यार क्यों चल रहा है? जो आदमी उसके टुकड़े करता है और उसको तुम लोग संभालते हो, इतने साल से उसको जेल में रखा है, अभी पता नहीं उसको जेल में भी वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती होगी, अभी ऐसे ही लग रहा है। जैसे कोर्ट में आता है हंसते हंसते आता है, हंसते हंसते जाता है, हम लोग ने आंखों से देखा है, वो लगता ही नहीं है उसने कुछ गुनाह किया है। हम लोग ने गुनाह किया है क्योंकि हम लोग दूर से आते हैं, बॉम्बे से आते हैं हमारे बच्चे के न्याय न्याय मिलने के लिए, हम लोग टेंशन में रहते हैं हमारे बच्चे को न्याय कब मिलेगा। उसको तो आते हैं, वो तो वीआईपी जैसा आता है, वीआईपी जैसे जाता है, उसको खाना पीना मस्त चल रहा है, ये क्या चल रहा है वही समझ में नहीं आ रहा है।
1: रजत शुक्ला, यू आर अ क्लासमेट एंड अ फ्रेंड ऑफ श्रद्धाज, यू हैव बीन वेटिंग ऑल्सो फॉर 4 years. How angry are you or how shocked are you that Aftab is being given the permission to skip summons, postpone summons, as NDTV has just investigated and found out, for MA sociology exam, dental appointment, mental health checkup, and many other such reasons? The judges seem to be happy to give Aftab permission to skip summons. Rajat, how do you feel about that?
2: Yeah, I feel that the very definition of democracy is being killed by what's happening. It feels that Aftab is a first-class citizen and Shraddha and people around Shraddha are third-class citizens. It truly feels that way.
1: I agree.
2: And my question is straight. I'm going to ask any and everybody responsible in the authority who can do something and everything in this case. The first would be to the judge himself, the one in Saket's court. What is his name? If you may please tell me.
1: H.S. Jaggi. Justice H.S. Jaggi, but don't address the judge directly.
2: So my
1: your
2: question,
1: emotions
2: my
1: are understood, but yeah.
2: If this goes to him, to Mr. Jaggi, the judge, will he, if by any chance, God forbid, I'm sorry, but if the same happens to his daughter, will he behave the same way? And if not, then why is he on this position to do such a partiality with Shraddha? I want this answer from him.
1: This is a very fair question that, is asked. Meghna, I want to bring you in on this. This is, you know, this anger from Shraddha's aunt, one of the only living relatives who is there, and Rajat, one of her only friends who has had the guts to step forward, is completely understandable. They are shocked. They are shocked that a judge would allow this murder accused. I don't need to remind you about the barbarism of the case. Meghna, you were on this channel and you were with me on my shows when we covered this 4 years ago.
3: Yes. They're
1: allowing him to do everything except attending. Meghna, what do you think?
3: I have tears in my eyes right now because Shiv, I'm not understanding. Anger is justified, but there's a sense of hopelessness that I'm feeling as a woman of this country and as a survivor of domestic violence. There are 200 million women in this country, and this is just reported cases. That's more

0: उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुँह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि एमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख की मॉर्निंग को 4:30-4 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया, घबराहट से होने लग गई। पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट करते करते सुबह 6:30-6 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, कि नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराया का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये?
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जांचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट

0: बराबर जांच कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गए ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पर रही
1: किडनी का।
0: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
2: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते। तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
3: लेर गया जद बैठे मैं भर्ती करा दी, जद के बच्चों तो होना लो जद में ठीक, रात भर मिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी अरपे से नहीं हो, अरपे से नहीं हो, जद बाबू ही हो, जद मैं सब खुश हुआ। बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने, जद मैं क्यों खाई हो, कह भाई कहाँ अपने शिक्षा डोड़ी के मन सर्दी लागे। डिलीवरी हूँ 2-3 घंटा बाद,
1: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली थी,
3: हाँ बच्चे मिली, माओ मिली कि पापा ने यार बोलो, जब मैं पापा ने यार फोन करी, मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये ख़त्म होने वाली है, जब मैं क्यों एकदम रुआ खाई हो।
4: आते हैं तो खुशी के लिए, लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं। क्या अभी 26 दिन हो गया,
5: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
1: अच्छा,
5: यूरिन नहीं आ रहा था।
1: अच्छा,
5: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गया, पीलिया वगैरह सब कुछ हुआ है, किडनी लिवर पे असर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी कोई आई होगी जिससे हो रहा है।
6: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, आईवी फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितनी भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये आईवी फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने आईवी फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
7: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.
8: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
9: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who've lost their lives.
10: Their constituency is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem, they go and stand by the people. And whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
8: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit to Europe. While the party has issued no official statement on this leave, sources have said that he is scheduled to attend the Chhatro Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon session approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
11: Rahul Baba kahan hai? Dhoondiye. Dhoondiye jara kahan hai? Bata nahi. Kahan hai? Woh bhi tour kar rahe hain. यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए. प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी.
12: बीजेपी हैज आल्सो टुडे रेज अ बिग क्वेश्चन, वेयर इज राहुल गांधी, वेयर इज ही हॉलिडेइंग, एंड देयर आर द
13: राहुल गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद राहुल गांधी. व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गोज अब्रॉड एज प्राइम मिनिस्टर ऑन द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री ऑफ द टैक्स पेयर, ही कम्स बैक एम्प्टी हैंडेड, शुड दैट बी द क्वेश्चन? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
12: So the leader of opposition, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
13: Well, when obviously people know where he is, he's gone on a break and he's back.
14: Rahul Gandhi lapata hai. Pichle 20 dinon se Rahul Gandhi videsh mein maze se chuttiyan mana rahe hain. अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज राहुल गांधी वापस आने वाले हैं, पर देश की जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहाँ, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया, क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती. आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं.
8: While the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 Assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the BSP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
15: नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
16: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है. इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है, इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा, ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं। लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं, ये हमेशा आते हैं सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है।
8: All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janbhoomi Tirth Kshetra Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
17: एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है।
18: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेकर था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स है, कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑर्डर हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्टोर भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वॉज द फर्स्ट फेयर। सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें, तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जस्ट साहब ने डेट लगा दिया।
19: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के। पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा होगी।
20: दिस मॉर्निंग शोज द डे, मार्केट्स ऑफन हैव अदर प्लान्स, बाय मिडडे द स्टोरी कैन बी वेरी डिफरेंट। That's when the Right Insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
21: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
22: I'm delighted to be chairing a meeting of such distinguished fellow businessmen, bankers, it's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
23: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
24: Gender parity to be reflected in while we choose leadership as well.
25: It's also important that how they are reshaping the industries.
26: We've got a fantastic jury. And we've left all decisions to the wisdom of the jury.
21: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
27: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
28: When markets close, clarity matters as much as speed.
27: We break break down what stayed beneath the surface and what could follow.
0: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
27: Join us before every closing bell
0: on India Market Close.
1: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
2: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
3: We learn that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
4: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
5: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया, जहां भी अन्याय हो
4: आप कॉपरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
5: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है उसका हमको अफसोस है।
4: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
5: प्रशिक्षण हम हमारे
4: नहीं मांगेंगे
5: सर।
6: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, corporator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
27: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life. The show that sets the prime time agenda.
7: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
27: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
21: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
28: So many attacks.
21: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
28: It's incredible.
21: He has seen history break.
8: Welcome back. Well, in a major development on the Strait of Hormuz, President Donald Trump has declared that the strait is now open and will remain open with or without Iran. Now, he's also announced the reinstatement of the Iranian blockade, named as such because it only targets Iran's ship and customers, while ensuring all other countries have fair and open use of the waterway. The United States will now be known as the guardian of the Hormuz Strait, and as a matter of fairness, will be reimbursed at a rate of 20% on all cargo shipped to cover the cost of providing safety and security in this volatile region. This is what Donald Trump had tweeted. Now, the process begins immediately, he said. Meanwhile, the United States and Iran tensions continue to escalate. The United States say that it has carried out a first-of-its-kind strike using the unmanned sea drones against an Iranian naval facility, according to CENTCOM. The operation targeted a submarine and ship maintenance base at Bandar Abbas, aiming to degrade Iran's ability to threaten commercial shipping. This is a reaction that came in from Donald Trump while he spoke to the foreign media. Let's listen in.
29: And most of their equipment is gone. Their anti-aircraft stuff is gone. We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years.
8: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: मैं यहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4-4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा पंखा पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6-6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। लास्ट में आगे बताते हैं हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, तो नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराए का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये?
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जांचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर अंत तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जांचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में, 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पर रही।
2: किडनी का
3: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
4: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
5: लेर गया जज बैठे, मैं भर्ती करा दी, जद के बच्चे तो होना लो जज में ठीक, रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी रहे और पैसे नहीं हो, और पैसे नहीं हो जद बाबू ही हो, जद मैं सब खुश हुआ है, बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा करने जद में क्यों खाई हो, कह भाई कहाँ अपने शिक्षा डोड़ी के मन सर्दी लागे, ले रही हूँ 2-3 घंटा बाद।
2: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली थी?
5: हाँ बच्चे मिली, माओ मिली कि पापा ने बोलो, जब मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये ख़त्म होने वाली है, जब मैं क्यों एकदम रुया खाई हो।
6: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं, क्या अभी 26 दिन हो गए।
7: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
8: अच्छा,
7: यूरिन नहीं आ रहा था।
8: अच्छा,
7: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गया, पीलिया वगैरह सब कुछ हुआ है, किडनी निकल गया सर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कि कोई दवाई वगैरह ऐसी मिठाई होगी जिससे हो रहा है।
9: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, IV फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितने भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये IV फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने IV फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
10: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismita Skin for NDTV.
8: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
11: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who've lost their lives.
12: Their constituency, it is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem, they go and stand by the people. And then whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
8: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit to the Europe. While the party has issued no official statement on this leave, sources have said that he is scheduled to attend the Chhatron Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon session approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
13: Rahul Baba kahan hai? Dhoondiye. Dhoondiye jara kahan hai? Pata nahi. Kahan hai? Woh bhi tour kar rahe hai. यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए. प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी.
14: बीजेपी हैज आल्सो टुडे रेज अ बिग क्वेश्चन, वेयर इज राहुल गांधी, वेयर इज ही हॉलीडेइंग, एंड देयर आर द
15: राहुल गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद राहुल गांधी? व्हेन द प्राइम मिनिस्टर गोज अब्रॉड एज प्राइम मिनिस्टर ऑन द एक्सपेंस ऑफ द कंट्री ऑफ द टैक्स पेयर, ही कम्स बैक एम्प्टी हैंडेड, शुड दैट बी द क्वेश्चन? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
14: So the leader of opposition, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
15: Well, when obviously people know where he is. He's gone on a break and he's back.
16: Rahul Gandhi lapata hai. Pichle 20 dino se Rahul Gandhi videsh mein maze se chuttiyan mana rahe hain. Ab Congress party keh rahi hai ki aaj Rahul Gandhi wapas aane wale hain. पर देश की जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहाँ, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया, क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती. आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं.
8: And while the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 Assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the BSP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
17: Okay, Mera. नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं. और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है, और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
18: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं. ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें. ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है.
8: All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
19: एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में. तो अगली डेट मंडे को दी गई है. तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है. तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं किसके आगे क्या हो सकता है.
20: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं. कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट. तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए. बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑर्डर हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डस्टर्ड भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं. तो उनको प्रिजर्व किया जाए. दैट वॉज द फर्स्ट फेयर. सेकेंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है. इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के पर सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें. तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया.
21: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के. पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो SIT बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निस्संदेह उसको सजा होगी।
0: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
1: When markets close, clarity matters as much as speed.
0: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
1: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
0: Join us before every closing bell
1: on India Market Close.
22: The Shiv Sena Shinde faction corporator is seen assaulting a female doctor and nurses at a hospital in Dombivli.
23: The thug you see is Shinde Sena corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy Ramesh Mhatre?
24: We learned that the action has been taken against the thug neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
25: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
26: Humko haq hamare party ke Balasaheb Thackeray ne diya, jahan bhi anyay ho.
25: Aap corporator ho ya gunde ho sir? नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
26: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है उसका हमको अफसोस है।
25: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर, अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे, क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
26: प्रशिक्षण हम हमारे
25: नहीं मांगेंगे
26: सर।
27: Had it not been for NDTV's coverage, none of this would have happened. And today, 9 hours after I spent 26 minutes questioning him, Ramesh Mhatre, corporator of the ruling Shinde Sena, has finally been arrested.
0: When others are warming up and raring to go, the stories that matter, the stories that shape your life.
28: Hello and welcome to watching.
0: The show that sets the prime time agenda.
28: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
0: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
29: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
30: So many attacks.
29: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
30: It's incredible.
29: He has seen history break. Live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
30: Welcome to Left, Right and Center.
29: Hard facts.
30: War struck country.
29: Hard questions.
30: In the Ukraine.
29: 30 years of trust.
30: In the Kargil area.
26: North Ukraine.
30: In France. In Italy.
26: At Srinagar.
30: I am Mr.
26: Vishnu Shom for NDTV.
29: Vishnu Shom. Only on NDTV.
31: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
32: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
33: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार. Pro innovators, registration करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक. An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे
29: भारतम. India Inc.
8: Welcome back. Well, in a major development on the Strait of Hormuz, President Donald Trump has declared that the strait is now open and will remain open with or without Iran. Now, he's also announced the reinstatement of the Iranian blockade, named as such because it only targets Iran's ship and customers while ensuring all other countries have fair and open use of the waterway. The United States will now be known as the guardian of the Hormuz Strait and, as a matter of fairness, will be reimbursed at a rate of 20% on all cargo shipped to cover the cost of providing safety and security in this volatile region. This is what Donald Trump had tweeted. Now, the process begins immediately, he said. Meanwhile, the United States and Iran tensions continue to escalate. The United States say that it has carried out a first-of-its-kind strike using the unmanned sea drones against an Iranian naval facility. According to CENTCOM, the operation targeted a submarine and ship maintenance base at Bandar Abbas, aiming to degrade Iran's ability to threaten commercial shipping. This is a reaction that came in from Donald Trump while he spoke to the foreign media. Let's listen in.
2: And most of their equipment is gone. Their anti-aircraft stuff is gone. We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're gonna keep the strait, and we'll probably run it. We'll become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years.
8: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुँह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि एमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख की मॉर्निंग को 4-4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट करते करते सुबह 6-6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। लास्ट टाइम आगे बताते हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, कि नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराए का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था?
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जाँचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जाँचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ही बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में। 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पे रही
2: किडनी का।
3: हाँ हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने उसी टाइम।
4: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते। तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी में गई, ऑपरेशन हुआ, तो ये सब चीज़ के कारण उसका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट ऑफ ब्लड हो जाता है। तो यह एक इरिवर्सिबल प्रक्रिया है जिसे हम बहुत मुश्किल से बचा पाते हैं।
5: लेर गया जज बैठे, मैं भर्ती करा दी, जद के बच्चों तो हूं ना लो जज में ठीक, रात भर बिन भर्ती रहा कि सुबह 9 बजे भी रहे, अर पेश नहीं हो जद बाबू ही हो, जद मैं सब खुश हुआ। बाद में कह मैं गई मियाँ शारदा खाने, जद मैं क्यों खाई हो, कह भाई कांपने शिक्षक डोड़ी के मन सर्दी लागे। डिलीवरी हूँ 2-3 घंटा बाद,
2: डिलीवरी के बाद बच्चे से मिली थी,
5: हाँ बच्चे मिली, माँ मिली कि पापा ने बोलो, जब मैं पापा ने फोन करी मैं कहो कि ज़्यादा दिक्कत होगी, जब मैं खाई हो क्या ये ख़त्म होने वाली है, जब मैं क्यों एकदम रुआ खाई हो।
6: आते हैं तो खुशी के लिए लेकिन जाते हैं तो रो के निकलते हैं, क्या अभी 26 दिन हो गया।
7: वो इन्फेक्शन हो गया था शरीर के अंदर, वो ब्लीडिंग और यूरिन की प्रॉब्लम हो गई थी।
8: अच्छा,
7: यूरिन नहीं आ रहा था।
8: अच्छा,
7: तो फिर वो खून की कमी, ब्लेडनेस गिर गए, पीलिया वगैरह सब कुछ हुआ है, किडनी निकल गया सर। ये तो कोई जहाँ पता चला है कोई दवाई वगैरह ऐसी कोई आई होगी जिससे हो रहा है।
9: बहुत सारी चीज़ें हैं जो ड्रग्स है, IV फ्लूड है, और इसके सिवाय जो इसमें पेशेंट में जितनी भी इंजेक्शन वगैरह जो भी काम लिए हैं वो सारे सील कर लिए, सस्पेक्शन है उन पे। ये IV फ्लूड जो हमने उस दिन काम लिया वो एक नया बैच ही था, उस दिन ही खोला था, नए बैच की हमने IV फ्लूड काम लिया था, बाकी मेडिसिन तो रूटीन काम ले ही रहे थे, पहले से काम ले रहे थे।
10: These cases raise serious questions on Rajasthan's healthcare system. Families are demanding answers. New mothers are forced to undergo repeated dialysis instead of holding their newborn babies. As for some newborns, they will now have to continue their lives without their mothers. The question no longer is on whether something went wrong, but is on how this all transpired. With camera person Ashwini Mehra, this is Bismi Taskin for NDTV.
8: Moving on to the other political stories that we are tracking, the BJP has intensified its attack on Congress MPs Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi Vadra over their absence from landslide hit Wayanad. The BJP alleges that the two leaders failed to stand with affected families, accusing Priyanka of limiting her response to a social media post and neglecting the constituency after the tragedy. Adding to the criticism was former CPI MP Hanan Mulla, who said that since Wayanad is their constituency, it is Rahul and Priyanka's duty to be there during a crisis. He also said that the elected representatives must stand by the people whenever their constituency faces such hardships.
11: Wayanad is nothing but a mere political pawn for the Congress First family. Srimati Priyanka Gandhi Vadra, who represents Wayanad like an absentee landlord, has totally neglected and abandoned the constituency, similar to how Rahul Gandhi previously exploited Wayanad. It has been 6 days since the devastating Wayanad landslide, which has claimed up to 8 lives so far. But the Wayanad MP Srimati Priyanka Gandhi Vadra has not bothered to visit the constituency or meet and console the grieving families of the victims who lost their lives.
12: Their constituency, it is up to their duty to see. Everybody has their constituency. If there is a problem, they go and stand by the people. And whatever they have thought better, they are doing. But people will decide.
8: And well, on the other hand, the BJP has once again turned the spotlight on Rahul Gandhi's absence, questioning his nearly 3-week stay abroad and demanding details of his foreign visit. The BJP leaders are asking, where is Rahul Gandhi and where is he travelling to? Whom is he meeting and who actually funded his travel and stay? And actually, why the Congress has remained silent on his whereabouts, saying the public deserves transparency and deserves to know where the leader of opposition actually is. Now, Congress sources, however, say that Rahul Gandhi is returning to India today after nearly 3-week visit to Europe. While the party has issued no official statement on this leave, sources have said that he is scheduled to attend the Chhatro Ki Goonj event in Dehradun on July 17th. Rahul's return comes at a crucial political juncture with the monsoon session approaching and key organizational challenges that are prevailing in Punjab, Goa and Uttar Pradesh as well that are waiting his attention.
13: Rahul Baba kahan hai? Dhoondiye zara kahan hai? Bata nahi kahan hai? Woh bhi tour kar rahe hain. यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए. प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में जरूर, मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी.
14: बीजेपी हैज आल्सो टुडे रेज अ बिग क्वेश्चन, वेयर इज राहुल गांधी, वेयर इज ही हॉलीडेइंग, एंड देयर आर द
15: राहुल गांधी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, हैज ही गॉन ऑन गवर्नमेंट एक्सपेंस, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन विद राहुल गांधी? When the Prime Minister goes abroad as Prime Minister on the expense of the country, of the taxpayer, he comes back empty-handed. Shouldn't that be the question? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
14: So the leader of opposition, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
15: Well, when obviously people know where he is, he's gone on a break and he's back.
16: राहुल गांधी लापता है. पिछले 20 दिनों से राहुल गांधी विदेश में मजे से छुट्टियां मना रहे हैं. अब कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आज राहुल गांधी वापस आने वाले हैं, पर देश की जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहां, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया? क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती? आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं.
8: And while the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the SP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
17: देखिए, मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो. मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं. हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं, और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए. कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं. अगर 37 सीट आई उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे. तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है. देश के अंदर एक माहौल है, और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है. और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर.
18: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं. जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है, इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है. इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले. ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा. ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं. ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें. ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए. इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है.
8: All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
19: एसआईटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में. तो अगली डेट मंडे को दी गई है. तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उसमें कुछ नहीं हुआ है. तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है.
20: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स है. कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट. तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी है, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स है, हुंडी रजिस्टर्स है, उन सबको प्रिजर्व किया जाए. बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑर्डर हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं. तो उनको प्रिजर्व किया जाए, दैट वॉज द फर्स्ट फेयर. सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है. इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें. तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया.
21: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के. पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, अत्यंत दुखद घटना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो SIT बनाई गई है उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा निसंदेह उसको सजा होगी।
0: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
1: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal of Saturday.
0: The show that sets the prime time agenda.
1: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
0: Join me, Aisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
22: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
23: So many attacks.
22: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
23: It's incredible.
22: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
23: Welcome to Left, Right and Center.
22: Hard facts.
23: War-struck country.
22: Hard questions.
23: In the Ukraine.
22: 30 years of trust.
24: In the Kargil area.
23: North Ukraine.
25: In France. In Italy.
23: At Srinagar.
25: INS Vikrant.
23: Vishnu Shom for NDTV.
22: Vishnu Shom. Only on NDTV.
26: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
27: That if a boy from Ahmedabad, with no capital and no connections, could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
28: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार. तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक. An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे
22: भारतम. India Inc's most respected names chose India Inc's best and brightest.
29: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
30: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they've done.
31: I think it's also important that how they are reshaping the industries. Commercial activities which they are into, and it's a very judicious mix of people to choose from. My compliments to the team.
22: Who will earn India's top business honors? Find out at the NDTV Profit Business Leadership Awards.
32: Your first move sets the day, and in markets, being early is the edge. The edge begins.
8: Welcome back. Well, in a major development on the Strait of Hormuz, President Donald Trump has declared that the strait is now open and will remain open with or without Iran. Now, he's also announced the reinstatement of the Iranian blockade, named as such because it only targets Iran's ship and customers, while ensuring all other countries have fair and open use of the waterway. The United States will now be known as the guardian of the Hormuz Strait, and as a matter of fairness, will be reimbursed at a rate of 20% on all cargo shipped to cover the cost of providing safety and security in this volatile region. This is what Donald Trump had tweeted. Now, the process begins immediately, he said. Meanwhile, the United States and Iran tensions continue to escalate. The United States say that it has carried out a first-of-its-kind strike using the unmanned sea drones against an Iranian naval facility. According to CENTCOM, the operation targeted a submarine and ship maintenance base at Bandar Abbas, aiming to degrade Iran's ability to threaten commercial shipping. This is a reaction that came in from Donald Trump while he spoke to the foreign media. Let's listen in.
33: And most of their equipment is gone. Their anti-aircraft stuff is gone. We hit them very hard last night. Every time they send a drone, we hit them very hard. But we had a deal. What nobody knows, we had a deal. It was a done deal. And then they broke it. They always break it. We've had 10 deals with these people. And so we're just going to hit them very hard. And we're gonna keep the straight. And we'll probably run it. We'll become the guardian of the straight. Maybe we'll call it the guardian angel of the straight. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years.
8: And that's all that we could pack in this edition. Thank you for watching. Good night and goodbye.

0: मैं यहाँ से जब उसको लेके गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला था कि बच्चे के मुंह में पानी चल गया, उस वजह से उन्होंने बोला कि इमरजेंसी में डिलीवरी करनी पड़ेगी। मैं 5 तारीख को मॉर्निंग को 4-4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट से होने लग गई। पंखा पंखा पंखा, हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6-6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्ट में बोला कि नीचे ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर ICU में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। और लास्ट में आगे बताते हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: आने के बाद फिर वो बाहर बैठा रहा मैं, मेरी मम्मी ने कहा कि भाई बहू ख़त्म है। मैंने कहा मैं देख कर आ रहा हूँ बहू कैसे ख़त्म है, तो नहीं ख़त्म हो तो मुझे डॉक्टरों की लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराया का मेरे पास, नौकरी करता हूँ 3-3.5 हज़ार रुपये महीने की मजदूरी टाइप। अब यहाँ के जितने भी कर्मचारी थे वो संतुलन दे रहे हैं मेरे को, हाँ करेंगे हाँ करेंगे, कब करेंगे, मैं मर जाऊँगा या मेरा बच्चा मर जाएगा जब करेंगे।
2: हाई रिस्क प्रेगनेंसी था ये?
3: नहीं मैम, बिल्कुल जितनी भी नॉर्मल जांचें थी सब नॉर्मल थी, शुरू से लेकर एंड तक हमने ट्रीटमेंट बराबर जांचें कराई है। जब हम यहाँ आए थे बिल्कुल नॉर्मल थी, शाम को 4:30 बजे करीब डिलीवरी हुई थी, डिलीवरी के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल निकली थी, फिर ब्लीडिंग हो गई तो स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, मम्मी ने फिर देखा, फिर इसको लेके आनंद फानंद में सुबह वहाँ लेकर गई ऑपरेशन थिएटर में, 4 दिन तक समथिंग ये वेंटिलेटर पर रही।
2: किडनी का
3: हाँ, हमें भी नेक्स्ट डे न्यूज़ से ही पता लगा कि इनकी किडनियाँ फेल हो चुकी सबकी, सब छूट गया। टैक्सी चलाता था मेरे पास, गाड़ी थी खुद की, वो बेच दी मैंने हॉस्पिटल।
4: इस एरिया में हमारे जो कोटा है या बीकानेर हो, जोधपुर हो, नागौर हो, इनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत है और हाई टेम्परेचर है, और महिलाएं हैं जो घर में भी हैं लेकिन वो पानी अत्यधिक पीना भूल जाती हैं काम करते करते, तो डिहाइड्रेशन की स्थिति में यदि वो महिला है, उसको पहले से ही बीपी है, प्रेग्नेंट है, ये सारी चीज़ें मिल करके जब वो कोई कॉम्प्लिकेशन में आती है और फिर प्रसव पीड़ा चालू हो गई, ऐसी स्थिति में जब महिला आती है उसके बाद में फिर उसका डिलीवरी

0: ढूंढिए जरा कहां है, पता नहीं कहां है। वह भी टूर कर रहे हैं, यह प्रधानमंत्री जी भी टूर में गए, राहुल गांधी जी भी टूर में गए। प्रधानमंत्री जी देश को जिता के आए और राहुल गांधी जी बंद कमरे में, जरूर मैं लिख के देता हूं, पता आप लगाइए, जरूर बंद कमरे में षड्यंत्र रच रहे होंगे कि जो अच्छे काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है किस प्रकार से उसमें भंग डाला जाए, रंग में कैसे भंग डाला जाए, उसका प्रयास कांग्रेस के राहुल गांधी जरूर कर रही होगी।
1: BJP has also today raised a big question: where is Rahul Gandhi? Where is he holidaying? And there are the
2: Rahul Gandhi, the Prime Minister of India, has he gone on government expense? Has he gone on government expense? What is this obsession with Rahul Gandhi? When the Prime Minister goes abroad as Prime Minister on the expense of the country, of the taxpayer, he comes back empty-handed. Shouldn't that be the question? Why is he going distributing melodies in across the world and making a fool of himself? I'm sorry.
1: So the leader of oppositions, you're saying that public shouldn't know where the leader of opposition is?
2: Well, when obviously people know where he is, he's gone on a break and he's back.
3: Rahul Gandhi lapata hai. Pichle 20 dinon se Rahul Gandhi videsh mein maze se chuttiyan mana rahe hain. Ab Congress party keh rahi hai ki aaj Rahul Gandhi wapas aane wale hain. पर देश की जनता ये पूछना चाहती है कि पिछले इतने दिनों में राहुल गांधी थे कहाँ, किससे मिले, किसने राहुल गांधी को फंड किया, क्या वो एंटी इंडिया जॉर्ज सोरोस एलिमेंट से राहुल गांधी मिलने गए थे इसीलिए कांग्रेस पार्टी उनका पूरा इटिनरी सार्वजनिक नहीं कर सकती। आज ये वापस से साबित हो गया है कि लीडर ऑफ अपोजिशन विदेश में इसीलिए जाते हैं कि छुट्टियां तो मनाते हैं पर साथ में एंटी इंडिया एलिमेंट से भी मिलते हैं।
4: While the Congress party is already facing a war of words and a political flashpoint with the BJP, what it's also experiencing is a political batter from its own ally, that is the Samajwadi Party. A fresh political flashpoint has erupted within the India bloc in Uttar Pradesh, with the Congress and the Samajwadi Party exchanging sharp attacks ahead of the 2027 Assembly elections. Congress MP Imran Masood has launched a blistering attack on ally Samajwadi Party, claiming that the Samajwadi Party won 37 Lok Sabha seats only because of the Congress support. Now, Masood has alleged that the SP cannot tolerate outspoken Muslim leaders, and he has also accused Akhilesh Yadav of remaining silent on issues concerning the Muslims. The Samajwadi Party, meanwhile, has hit back strongly and dismissed Imran Masood's remarks as an attempt to grab the attention, and maintained that the future of the Congress Samajwadi Party alliance will be decided by the high commands of both the parties.
5: Okay, Mira. नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई है। अगर 37 सीट आई है उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई है, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर वन तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता लीडर।
6: इमरान मसूद जी भी ओपी राजभर जी के रास्ते पे चल रहे हैं, जैसे ओपी राजभर जी कुछ भी कहते रहते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई तथ्य नहीं होता है। इसी तरह से इमरान मसूद भी आजकल कुछ भी कहते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को चर्चा में रहने के मन होता है। इनको लगता है कहीं हमारी बाइट चल जाए, न्यूज हमें थोड़ी कवर कर ले। ये सभी जानते हैं कि समाजवादी और कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा कि गठबंधन कैसे और किस रूप में होगा। ये उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष भी कह रहे हैं, लेकिन ये साहब हैं मानने को तैयार नहीं। ये हमेशा आते हैं, सोचते हैं इसी बहाने हमारी थोड़ी पॉपुलरिटी हो जाए, इसी बहाने लोग हमारी थोड़ी बात सुन लें। ये जो सस्ती राजनीति होती है, मुझे लगता है ऐसी नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा चुनाव है और ये जनता इसको समझती और जानती है।
4: All right, let's move on and tell you what's happening in the case of the Ram Temple donation theft probe, where the Supreme Court has issued a notice to the Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust in the temple donation theft case. Now, the Supreme Court has also sought status report from the SIT that had been constituted by the Uttar Pradesh government. Hearing on the matter is now scheduled on the July 20th. Meanwhile, sources have also told

0: NDTV that the investigation has uncovered key findings. CCTV footage is set to corroborate the accuser's confessional statements. Now, Congress has demanded the Prime Minister and Home Minister to respond in the Parliament. The Aam Aadmi Party, meanwhile, has said that it will support the opposition if the issue is raised in the upcoming monsoon session, while the BJP has accused the opposition of politicizing the Ram Temple issue ahead of the Uttar Pradesh elections. Lots of political reaction coming in on that story.
1: सोसाइटी की रिपोर्ट मंगाई गई है और स्टेट से रिपोर्ट मंगाई गई है कि अब तक इस जांच में क्या हुआ है राम मंदिर चंदा चोरी मामले में, तो अगली डेट मंडे को दी गई है। तो हमारी मांग थी सीबीआई जांच की, लेकिन अभी उस पर कुछ नहीं हुआ है, तो मंडे के बाद ही बता सकते हैं कि इसके आगे क्या हो सकता है।
2: हमारा ट्रांसपेरेंसी को लेके था, क्योंकि ये पब्लिक ऑफरिंग्स हैं, कोई रिक्शे वाला भी 10 रुपए का डोनेट करता है तो वो प्रॉपर्टी जो है वो डाइटी की है, राइट। तो हमने इसमें केवल ये कहा था कि अब तक जितने भी सीसीटीवी हैं, डीवीआर की रिकॉर्डिंग्स हैं, हुंडी रजिस्टर्स हैं, उन सबको प्रिजर्व किया जाए। बिकॉज अगर आपको पता है कि डीडीआर जो होते हैं, सीसीटीवी कैमरे होते हैं, ये कोई वैकेशन या किसी की वेट नहीं करेंगे, अपने आप ऑर्डर हो जाते हैं, या फिर वो डैमेज भी हो सकते हैं, ऑल्टर भी हो सकते हैं, डेस्कटॉप भी हो सकते हैं, मूव भी हो सकते हैं, तो उनको प्रिजर्व किया जाए। दैट वॉज द फर्स्ट फेयर। सेकंड, जो एसआईटी की रिपोर्ट चल रही है, हमें पूरा भरोसा है, इन्वेस्टिगेशन जैसा भी चल रहा है, एजेंसी अच्छा काम कर रही है, तो कम से कम वो कोर्ट के सामने आ जाए, स्टेटस रिपोर्ट फाइल कर दें। तो इसमें मंडे को अभी ऑनरेबल जज साहब ने डेट लगा दिया।
3: निसंदेह पूरे देश में नहीं, अभी तो पूरी दुनिया में, हर समाज में वेदना है राम जन्मभूमि प्रकरण को लेकर के। पर मुझे लगता है कि मेरे द्वारा आपके माध्यम से मैं दुनिया के उन लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते, राम जन्मभूमि में जो भी घटना हुई है वो अत्यंत दुखद घटना है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखरेख में योगी जी के द्वारा जो एसआईटी बनाई गई है, उसमें जो भी दोषी पाया जाएगा, निसंदेह उसको सजा होगी।
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life. The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.
6: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindoor.
7: So many attacks.
6: The chaos and cries of disaster zones. To fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
6: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
7: Welcome to Left, Right and Center.
6: Hard facts.
7: War struck country.
6: Hard questions.
7: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
8: In the Kargil area.
7: North Ukraine. In France. In Italy.
8: At Srinagar.
7: I am Mr.
9: Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom. Only on NDTV.
10: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
11: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be a thousand more Gautam Adanis sitting undiscovered.
12: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार. प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक. An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे
6: भारतम. India Inc's most respected names chose India Inc's best and brightest.
13: I'm delighted to be chairing a committee of such distinguished fellow businessmen, bankers. It's just lovely to be back on this NDTV jury. I have been a fan of NDTV for a long time.
14: Many of the nominees are extremely close together in terms of what they
8: what they've done.
14: I think it's also important that how

0: sense? Where is the dignity, urgency and humanity, Shiv? It's been 4 years. 35 pieces of that poor girl's body, and the headlines about Aftab's MA examination and not about his punishment. Why has the guy not been hanged by now?
1: You know,
0: this is the real tragedy.
1: You're absolutely right. And I actually wanted to, remind our viewers and remind ourselves also about the barbarism in this case. Maafi chahta hoon, Rajal ji. Ek baar main apne darshakon ko remind karna chahta hoon ki Aftab ne kya kiya tha. श्रद्धा के साथ एक बार मैं रिमाइंड करना चाहता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रजत एंड मेघना इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मैन इज अक्यूज्ड ऑफ डूइंग एंड द काइंड ऑफ फेवर्स ही इज बीइंग गिवन बाय द कोर्ट जस्ट लुक एट व्हाट ही इज डूइंग ही इज अक्यूज्ड ऑफ किलिंग हिज लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर स्ट्रैंगल्ड हर आफ्टर एन आर्ग्यूमेंट श्रद्धाज बॉडी वॉज डिसमेंबर्ड विच मीन्स इट वॉज चॉप्ड इन टू पीसेस He stored the pieces of her body inside a refrigerator and disposed of the remains in little polythene bags in different locations over several days. Mehroli, Chhattarpur, all parts of South Delhi in the jungles. Charged with murder and causing the disappearance of evidence, Aftab has pleaded not guilty. Let me just remind all of you, Meghna, Rajat, Rajal, madam, that Shraddha has not even been cremated. She has not even been cremated because the case is still on and her body parts are still part of evidence in a case that continues to stretch on. Rajal ji, Nyay to dur ki baat hai. Abhi to system to atak gaya hai to give favors dene ke liye Aftab ko. Rajat, can you hear me?
2: Yeah, I can hear you very well.
1: I am just wondering where things have gone, you know, where the system has got lost in such a case. I remember the Shraddha case. Meghna has been on my show multiple times. You've been on my show, Rajat, as well, multiple times. Not only have people forgotten, the system has completely gone in the opposite direction to give favors to the accused. Rajat?
2: Yeah, I mean... See, either this is a case where too much corruption is happening and a scrutiny must be done as to why this is happening and why there is such a big delay in such a case which has horrified the whole nation. And Aftab himself, if I remember, this news was all over the television on all the channels where Aftab's statement was he has no remorse. He is going to get... some 72 virgins in Jannat, some statements like that, you know. After that as well, when he himself confessed that, you know, he has killed and, you know, thrown away pieces at all these places. He himself helped the police to find those pieces. What are these people waiting for? I mean, anybody understand?
1: You know,
2: I understand is this is a major case of corruption. Happening, a lot of money has been given to these people. Maybe that can be a very possible.
1: You know, our reporter Tejashri.
2: You know, angle here.
1: You know, I want to share something with all of you. Our reporter Tejashri Meghna came back with court documents, proceedings, etc., to show that a single witness has been cross-examined over 8 separate hearings over several weeks at the request of the defense because they want to cross-reference, they want to check information. And there is one hearing every few weeks. So 8 separate hearings, you can imagine how long it actually takes. It is no surprise to me that this case is nowhere near being over. Rajal Nayak ji, agar meri baat aa rahi hai, meri awaaz aa rahi hai aapko, mera sawaal ye hai ki, kaun ladega ab Shraddha ke liye? Aap hain jo Delhi aate hain is hearings attend karne ke liye. Aur kaun hai? Aapke bhai saab guzar gaye hain pichle saal. Kaun reh gaya abhi jo... श्रद्धा का युद्ध लड़ेगा कौन कौन है ये
3: हम लोग ही लड़ेंगे उनका बेटा है श्री वालकर वो भी है जैसे जेम्स गोंसाल्विस उनके दोस्त है हम तीनों हमेशा दिल्ली आते थे उनके साथ अभी भाई साहब तो नहीं है लेकिन भाई साहब जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे पे आई है और बेटा अभी छोटा है तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो ले रहा है, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं क्योंकि भाई साहब खुद नहीं चाहते थे श्री को इन्वॉल्व करने के लिए। तभी हम लोग, मैं और जेम्स गोंसाल्विस, हम दोनों ज़्यादा उनके साथ रहते थे और केसेस हैंडल करते थे उनके साथ। और जैसे कि हमारी लॉयर सीमा खुजवा, उनके साथ हमारी बातचीत तो होती है तो वो हमें अपडेट देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हुआ था कि हमको पता ही नहीं चला। हम लोग सोच रहे थे कि 19 को निकलेंगे बॉम्बे से और 20 का एयरिंग करेंगे भी वापस आएंगे। उसके बाद सडनली हम लोग को ऐसे न्यूज़ आता है कि एयरिंग कैसे वे हो गई है, तो यही समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रहा है, ये अंदर का पॉलिटिक्स है कि उसको कोई बख्श दे रहा है कि उसका समाज उनको दे रहा है। अगर हर लड़की, आजकल लड़की सेफ नहीं है सबको पता है, तो गवर्नमेंट ने भी ऐसा कायदा निकालना चाहिए कि लड़की को तुरंत कोई भी अच्छा सा न्याय मिलना चाहिए। बस हो गया, अभी श्रद्धा को न्याय चाहिए। जिस तरह लड़की को अभी काफ़ी केसेस महाराष्ट्र में तो बहुत अभी हो रहे हैं, इसका रेप हो गया, उसका रेप हो गया, तो हम लोग क्यों नहीं उनको सजा देते? हमारा गवर्नमेंट क्यों उनको इतना ये कर रहा है, इतना लाड़ प्यार क्यों कर रहे हैं? बाकी के देश में देखो कितने अच्छे अच्छे कायदे कड़क निकले हैं, ऐसे नहीं बोल रही हूँ, लेकिन अगर आप एक्शन लोगे, उसी टाइम एक्शन लोगे, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी। छोटे छोटे बच्चे, एटलीस्ट 3 साल के बच्चे के साथ रेप होता है, तो आप सोचो क्या चल रही है।
1: राजल जी, मैं आपको वादा दे सकता हूँ कि एनडीटीवी का स्पेशल इन्वेस्टिगेशन का असर होगा, आप देखेंगे, क्योंकि सिस्टम पूरा हिल गया होगा। अभी जो लाइव, जो आपकी आवाज जा रही है नेशनल टेलीविजन पर, सब लोग सुन रहे हैं, कोर्ट्स भी सुन रहे हैं, पुलिस भी सुन रहे हैं, तिहार जेल भी सुन रहे हैं। मेघना, दिस इज सच अ ट्रेजिक स्टोरी, लुक एट व्हाट राजल जी सेज, यू नो, श्रद्धाज फादर इज नो मोर, डाइड फाइटिंग दिस केस,
3: ब्रदर इज जस्ट। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपके वजह से मेरा आवाज दुनिया में पहुंच रही है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपकी वजह से, अगर पूरी मीडिया के वजह से, अगर मेरी बच्ची को, हमारे बच्ची को न्याय मिल रहा है, तो अभी दे दो, बस हो गया। अभी 5 साल बहुत हो गए, जिस दिन फांसी मिलेगी ना, उस दिन मेरे भाई को और श्रद्धा को शांति मिलेगी। उसको छोड़ो मत, क्यों लाड़ प्यार कर रहे, वही समझ में रहे, उसको पढ़ाई देने की क्या इतना ज़रूरत क्या है, मुझे उसका ही जवाब नहीं मिल रहा है। अभी मैं दिल्ली आऊँगी, मैं गवर्नमेंट को भी पूछूंगी, अपने सरकार को पूछूंगी, मैं यहाँ पे सीएम को भी जाके मिलने वाली हूँ, हमारे देवेंद्र फडणवीस सर को भी जाके मिलने वाली हूँ कि ये क्या चल रहा है। आपने हमें कमिटमेंट किया था हम लोग फास्ट ट्रैक पे जाएंगे, उसको फांसी की शिक्षा देने के लिए हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करेंगे। हमारे यहाँ पे मैंने अंदर मैडम से भी बात की, वहाँ उन्होंने भी मुझे प्रॉमिस किया कि हम लोग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को जाके मिलेंगे, तो मैं जल्द से जल्द मिलके हमारी बच्ची के लिए न्याय मांगूंगी।
1: क्योंकि क्योंकि हमारे मन में भी है कि
3: यार जो चल रहा है ना,
1: का मतलब वो क्या है, अगर एक केस 4 साल के ऊपर भी चल सकता है,
3: मतलब क्या है,
1: तो मतलब ही क्या है। मेघना, माई क्वेश्चन टू यू, जस्ट लुक एट दिस फैमिली, जस्ट लुक एट दिस फैमिली मेघना, you know, the Shraddha's father died fighting, obviously broken hearted, her little brother has just turned 18, they don't want to involve him, his entire life is going to be defined by the fight for justice.
0: It's, you know, Shiv, if this was just an isolated case, perhaps we could dismiss it, but there's such a disturbing pattern in our justice system where all the time this, you know, what ma'am is saying, the extraordinary compassion that's shown to men who are convicted of these heinous crimes, while the survivors and their families are spending years, livelihoods, lives are being lost, waiting for justice. Look at the Nirbhaya case, justice came after 8 years and the juvenile is out there roaming about, by the way, in the streets of Mumbai.
1: Yep.
0: Bilkis Banu case, remission they were out on, in the Hathras case, in Ram Rahim Singh's case out on parole, which we just discussed. What is the message that the judiciary is sending to women? I'm not understanding that, you know, we are not asking for some special treatment. We are asking for basic justice. And
1: absolutely,
0: this is much bigger than Aftab Poonawala. Tomorrow there'll be another Shraddha. There's going to be another family that's waiting outside the courtrooms, another survivor wondering whether the system is going to protect her. Forget when. Is this system even going to protect her? What message are you sending? People are
1: absolutely
0: watching. There is huge, huge outrage that is building up now against the legal system, and something has got to give. We need justice fast and quick.
1: Absolutely. I'm going to thank all of you for the moment. This is only part one of our investigation. I promise you, I will be continuing to put NDTV's rigorous spotlight. Nobody would have even known about this leniency to Aftab had it not been for the NDTV news break on Saturday. And I'm glad we sent out our reporter to do even more. Thank you to all of you for being with us.